0: ଶରୀରକୁ ଯେପରି ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କରାଯାଏ, ସେହିପରି ମନକୁ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କରାଯାଏ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା, ସମୟ ସକାଳ 6 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का संयुक्त उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि

0: मुजफ्फरपुर, ढाल के बार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है।
1: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का साक्ष्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र मजबूत, सक्रिय और समयबद्ध है। उन्होंने न्यायपालिका में लगातार सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में कल आयोजित 6वें राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान में मुख्य भाषण देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुधार को नियमित प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Government has notified rules specifying that banks and payment system providers cannot impose charges on UPI transactions of up to 2,000 rupees. Finance Ministry issued a gazette notification yesterday under the Payment and Settlement Systems Act 2007. It listed UPI transactions of up to 2,000 rupees and debit card payments made through RuPay as electronic payment modes for which customers cannot be charged. The notification comes after concerns were raised over possible charges on UPI payments following the passage of Taxation and Other Laws Amendment Act in Parliament that proposed changes to the legal framework governing payment systems. However, the notification states that transactions up to 2,000 rupees will remain charge-free, leaving scope for levying charges on transactions above this threshold limit. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the fifth edition of Semicon India 2026 at Yashobhumi, New Delhi on Thursday. The event will bring together over 600 exhibitors, 300 international companies and delegations from more than 40 countries. The exhibition will feature 6 country pavilions, 12 state government pavilions and a dedicated startup pavilion. Semicon India is India's premier semiconductor conference and exhibition jointly organized by the India Semiconductor Mission, the Ministry of Electronics and Information Technology and SEMI. It serves as a flagship platform for bringing together the global semiconductor and electronics ecosystem, advancing collaboration, innovation, manufacturing, investment and talent development. Chief Justice of India, Justice Suryakant, has described the mechanism developed by the Supreme Court and High Courts to address complaints against judges as robust, very responsive

आकाशवाणी संबलपुर जुहार आंचलिक खबर पढ़ुचन सुप्रीति मिश्र आज होछि कृषि भित्तिक गणपर्व नुआखाई बुधो मासर उज्जवल पखर पंचमी तिथि न पश्चिम ओडिशा न लोके निज निजर इलाकार दे देवतांकर राशि अनुसार धारिज लगंती दे देवतांकु नुआ लगाला उतरु निजर घरे नुआ खाइबे संबलपुर न इष्टदेवी मा समलेई कंठाने नुआ लगाबार के सब प्रकार प्रस्तुति सिसिछि सकाल 9:40 नु 9:54 भित्रे माँ समलिंग कंठाने नवान्न लगी करा जीवा समलिंग कर्ण नुआ लगला उतरु घरे घरे नुआ खाई सारा पर लुके दे देवता दर्शन करवार सहित बड़ सान जहाँ के जेन्ता मायन से हिसाब से जुहार भेट हे ऊपर बेला गाँ सहर सबुन जुहार भेट कार्यक्रम होगा नुआखाई लगी पश्चिम ओडिशार गाँ नु सहर हो गहल चहल बाहर कामधाम आर पाट

0: पढ़ुवा लोके निजर परिवार संगे नुआखाइबार के गलाकाल नु घर मानक पहुंची जाइछन। गलाकाल जगा जगान नुआखाई हाट बसिथिबार भेले घर मानक नुआखाई साजो जुगाड़ सही सारी गांव मानक झाकर माने लोक मानकर घरे नुआ धान पहुंची छन। संबलपुर पाटणेश्वरी मंदिर के भी नुआखाई लगी गलाकाल सरिया धान पहुंची छे। नुआखाई अवसर में राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कम्भम पाटी राज्यवासी को शुभेच्छा जनईन से बार्ता सुख शांति मैत्री और आनंद और परंपरार परब नुआखाई अवसर राज्यवासी को शुभेच्छा और अभिनंदन जनईन। इतार सहित राज्यपाल राज्य चाषी भाई बहन मान सुख और समृद्धि कामना करवार संगे ओडिशा के गोटे अग्रणी और प्रगतिशील राज्य बनाबार की आह्वान दीछन। से मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पश्चिम ओडिशार बड़खा तिहार नुआखाई लगी सबको नुआखाई जुहार शुभेच्छा और अभिनंदन जनईन। नुआ धान के निजर इष्टदेवी को समर्पित कर सभी मिसिकी नुआखाइबार परंपरा नुआखाई तैयार होमर संस्कृति समृद्धि और एकतार प्रतीक बोली मुख्यमंत्री कहिछन।
1: जय जगन्नाथ जय मा समलेई समकु मोर नुआखाई जुहार। ओडिशार महान कृषि भित्तिक गणपर्व नुआखाईर शुभ अवसर रे सबु राज्यवासी को अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊछे। नुआखाई समस्तंकर जीवन रे नुआ आशा आनी देउ। मा समलेई समस्तंकर जीवन थी हस खुशी सुख शांति उन्नति प्रगति सफलता भरी देउन बोली प्रार्थना करूछे। समकु फेर थोरे मोर नुआखाई जुहार जय मा समलेई।
0: नुआखाई अवसर आज पहपहनु समले मंदिर माँ को नुआ वस्त्र आउ अलंकार थी सुसज्जित करुतु मंगलालती कर माँ पीठन नवान्न लगी करजार लगी दिनर एगार बजे तक सर्वसाधारण दर्शन बंद रहा। दिनर एगार नु एगार बाजिकी 45 मिनिट तक दर्शन लगी माँ द्वार खोल जावा माँ को नवान्न लगी कलाउतु मैदान 12:30 बजे नु भक्त मैंने माँ दर्शन करें समलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट बोर्ड तरफ सूचना दी जाइए। ये अवसर आज भक्त मानक कानिका भोग भिल बंटा जावा। सारा पश्चिम ओडिशा बुध मस पंचमी तिथि नुआखाई पाली थवर बेले चतुर्थी दिन नुआपड़ा जिला खरिया राजपरिवार दुही अधिष्ठात्री देवी नवान्न लगी गड़रक्षी देवी रक्तांबरी आउ अधिष्ठात्री देवी माँ समलेश्वरी नुआखाई तिहार पाली आज जिलार भिन्न भिन्न जगान उषत उष्णाकिर सहित नुआखाई भिल पालन कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबे गुरुवार दिन नुआ दिल्ली जशोभूमि ठाने 5 नंबर सेमिकन इंडिया 2026 के उद्घाटन करबे। इथि 40 नु अधिका देशर 600 नु अधिका प्रतिनिधि 300 अंतर्जातीय संस्था आउ प्रतिजोगी भाग नेबे। सूचना अनुसार सेमिकन इंडिया कार्यक्रम रो शुभारंभ 2021 मसिया डिसेंबर मासे हेतिला। एथि लागि 76,000 कोटी टका खर्चा हेबा बोली जना परिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन आउ जनसेवार 25 बछर पूर्ति अवसर संबलपुर थाने गुटे जरूरी प्रस्तुति बैठक हो जाए। सांसद धर्मेन्द्र प्रधान अध्यक्षता बैठक थी पंचायतीराज मंत्री रविनारायण नायक विधायक जनारायण मिश्र प्रमुख उपस्थित थे। आईवा 17 तारीख नु मूल होकर मसे तक सेवा संकल्प अभियान नर सेवा ही नारायण सेवा पालन कर सामाजिक संगठन स्वेच्छासेवी संगठन और तृणमूल स्तर मातृशक्ति को मिसेकरी ई सेवा कार्यक्रम के सफल करबा लागि बैठक थी निष्पत्ति निया जाइछे। संबलपुर जिल्लार पाखापाखी सबु निर्वाचन मंडली न भिन्न भिन्न कार्यक्रम मान आयोजन करा जिबा ई भितरे मां समलेश्वरी मंदिर न महादीप भिल दान करा जिबा बोली बैठक नु जना पड़िछे। आज हे दूरदर्शन प्रतिष्ठा दिवस 1959 मसीहा आज दिन दूरदर्शन पहला थर लगी तार प्रसारण मूल कर 67 बछर तले सेटा खाली दिल्ली भितरे सीमित थिबार बेले आज दूरदर्शन प्रसारण जातीय आ अंतर्जातीय स्तर के पहुंची। ये अवसर भुवनेश्वर दूरदर्शन केन्द्र तरफ आज स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजन कर देश आ राज्य नाकरा कलाकार निजर कलार प्रदर्शन करबे बोली जनापड़ी। एचरिन आंचलिक खबर इन शेष होगा। आरबलर आंचलिक खबर सुनी पारे राति 7:02 थी जुहार।

0: भारतस्य मुख्य न्यायाधीशेन सूर्यकान्तेन न्यायाधीशानां विरुद्धं परिवादानां निवारणाय सर्वोच्च न्यायालयेन उच्च न्यायालयैश्च विकसिता व्यवस्था सुदृढा अतीव प्रत्युत्तरशीला समयोचिता च वर्णिता। अनेनैव तेन न्यायपालिकायां निरन्तर परिष्कारस्य अधिक पारदर्शकतायाश्च आवश्यकतायां बलं प्रदत्तम्। ह्यः नवदिल्ल्यां प्रत्यक्ष न्याय प्रदानं न्यायव्यवस्थायाः स्तम्भरूपेण पारदर्शिता जनविश्वासश्च इति विषयमाधृत्य आयोजिते षष्ठे राम जेठमलानी स्मृति व्याख्याने मुख्य भाषणं कुर्वन् मुख्य न्यायाधीशः अवोचत् यत् परिष्कारः एव शाश्वत नियमो भवेत्। समुद्र सुरक्षां प्रति संशयमुत्पादयन् अमेरिका ईरान देशयोः प्रत्यग्रह विवादः समुद्भूतः। ईरानीय सैन्यदलेन आख्यातं यत् तैलपोतः सुरक्षा सीमाम् अतिक्रम्य जलसुरंगेन विस्फुटः। परम् अमेरिका देशस्य मध्य कमाण्ड विभागेन अस्य खण्डनं कुर्वता प्रतिपादितं यत् ईरानीय ड्रोन इत्यनेन एव अस्य पोतस्य उपरि आक्रमणं विहितम्। नेपालस्य विद्युत् संकटम् अपाकर्तुं भारत सर्वकारः अग्रे आगतः। भारतेन दिसम्बर मासस्य 31 दिनाङ्कं यावत् प्रतिदिनं विद्युत् निर्यातम् अन्वामोदि। नेपाले अप्लावेन जलविद्युत् परियोजनाः विनष्टाः सञ्जाताः। प्रकृतिकोपस्य संकेतं ददत् भारतीय ऋतुविज्ञानविभागः प्रत्यपादयत् यत् अद्य दिल्ली हरियाणा असम प्रभृति राज्येषु अतिवृष्टिः भविष्यति। विभागेन अनेन प्रतिपादितं यत् दक्षिण भारते अपि अतिवृष्टिः भविष्यति। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी भवानी पटना समय सकाल 7:00। श्रोताबंधु शुणु आज आम केन्द्र प्रचारित होगा कार्यक्रम संपर्क प्रथम शुणु चलित अधिवेशन ओडिया आलोचना विषय रही नुआखाई पर्वर महनीयता शुणवे सकाल 7:25 आलोचक अशोक कुमार पात्र चाषर कथा रही सकाल 7:40 सकाल 7:45 प्रचार करिबो संगीत लहरी कार्यक्रम केतोटी आधुनिक गीत शिल्पी माने हेले सुरेश वाडेकर साधना सरकम एवं अरविंद। सकाल 8:30 प्रचार करिबो प्रायोजित कार्यक्रम उद्योग अंकुरण कार्यक्रम रिले करी प्रचार करिबो आकाशवाणी कटक केन्द्र। गीत गीतांजलि शुणवे केतोटी भक्ति गीत सकाल 8:35 शिल्पी अरविंद मुदुली कंठरी। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कृत महाकाव्य वैदेश विलास प्रचार करिबु सकाल 8:45। सकाल 9:00 शुणवे केतोटी हिंदी कथाचित्र गीत एवं 9:30 रही ओडिया कथाचित्र गीत। पूर्वाह्न 10:10 शुणवे विशेष कार्यक्रम खोला छरका। द्वितीय अधिवेशन दिन 12:00 शुणवे केतोटी सुगम संगीत शिल्पी माने हेले विजय कुमार मिश्र दीप्तिमयी महांति सागरिका रावल लक्ष्मीकांत पालित। कार्यक्रम गाँ मार कथा प्रचार करिबु दिन 12:30। चासर कथा रही दिन 1:10 दिन 1:20 शुणिपारे महिला मानक उद्देश्य कार्यक्रम शक्ति रूपा। दिन 2:45 प्रचार करिबु केतोटी हिंदी कथाचित्र गीत। तृतीय अधिवेशन अपराह 5:00 शुणवे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। अपराह 5:30 युववाणी क्रम शुणवे सीधा प्रसारण फोन इन कार्यक्रम गीतटी मितटी। संध्या 6:00 शुणवे प्रायोजित कार्यक्रम उद्योग अंकुरण कार्यक्रम रिले करी प्रचार करिबो आकाशवाणी कटक केन्द्र। लोकगीत क्रम घुमरा गीत प्रचार करिबो संध्या 6:30 परिवेशन करिबे काशीनाथ बिसी एवं साथी। राति 7:25 प्रचार करिबो जिल्ला हालचल क्रमरे सुवर्णपुर जिल्ला संपर्क रे। राति 7:30 प्रायोजित कार्यक्रम किसान बाणी ए कार्यक्रम द्वारा रिले करी प्रचार करिबो आकाशवाणी कटक केन्द्र। समवेत कंठरे देश वंदना शुणिबे राति 8:00। राति 8:15 शुणिबे शिल्पी जगजीत सिंह कंठरे केतोटी हिंदी भक्ति गीत। स्पोर्ट्स स्कैन राति 8:30 स्पॉटलाइट राति 9:15 और राति 9:30 मनी टॉक एंड मंथन ए समस्त कार्यक्रम शुणिपारे आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र। अनुरोध रे हिंदी कथाचित्र गीत रही राति 10:00। राति 10:30 प्रचार करिबो शास्त्रीय संगीत क्रम पंडित हरिप्रसाद चौरासिया परिवेशित।

0: ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗୀତଟି ଶୁଣୁଥିଲି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଣ୍ଠରେ, ଗୀତ ରଚନା ମୋହିତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଶେଷ ହେଲା ସଙ୍ଗୀତ ଲହରୀରେ କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ର ଗୀତ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀ ପାଟଣା, ସମୟ ସକାଳ 8ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରଣରେ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ ଏବଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିପାରିବେ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ, ଏବଂ ପରେ ପରେ ଶୁଣିବେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଙ୍କୁରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने कहा ₹2000 तक के यूपीआई भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की, और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि बैंक ₹2000 तक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI लेन देन और रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। हालांकि ये शुल्क भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेन देन पर लागू MDR से काफी कम होंगे। सरकार का यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हालिया संशोधन के बाद UPI लेन देन पर शुल्क की आशंकाओं के बीच आया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक भाग लेंगे।
3: दो दिवसीय वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में विश्व भर से पर्यावरण विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योजक और शोधकर्ताओं हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य पुरानी सामग्रियों और उत्पादों के पुनरुपयोग, रिसाइकलिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग, हरित ऊर्जा, रोजगार, वित्त और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 4 प्लेनरी और 16 विषय आधारित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में 125 से अधिक प्रदर्शक अपने व्यावहारिक सर्कुलर समाधानों का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 17

0: 18 सितंबर को दुनिया भर में 80 विशेष एक्सीलेटर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के प्रयास में हैं। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई, जो 18 सितंबर तक चलेगी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, मूल स्थान के नियम तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
0: दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024-25 में 8.66 अरब डॉलर से घटकर वर्ष 2025-26 में 7.95 अरब डॉलर रह गया, जो 8.22% कम है। भारत से कनाडा को प्रमुख निर्यात में दवाइयां, लोहा और इस्पात, समुद्री खाद्य, सूती परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन शामिल हैं, जबकि कनाडा से भारत के प्रमुख आयात में दालें, मोती और अर्धकीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा तेल शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेतकिन ने भारत और दक्षिण अमरीका के प्रमुख व्यापार समूह मरकोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। कल नई दिल्ली में राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6वें संस्करण में उन्होंने ये बात कही।
4: Given a choice, a judicial officer,
5: अगर किसी न्यायिक अधिकारी को अंतरिम आदेश देने पर, मामले की सुनवाई टालने पर या अंतिम आदेश पारित करने पर शिकायत का सामना करना पड़े तो हर चरण में उसके खिलाफ शिकायत आ सकती है। यह गंभीर बहस का विषय है कि क्या ऐसी हर शिकायत को किसी सार्वजनिक मंच या वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए या फिर इसके लिए न्यायपालिका के भीतर ही एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था में पूरी निष्पक्षता और बिना किसी पूर्वाग्रह के शिकायतों पर विचार किया जाना चाहिए।
1: मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के बीच प्रेम और सद्भावना बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे हृदय में प्रेम, सौहार्द और सद्भावना का विकास हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह

0: राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनके सुरक्षाकर्मी डिनो मौर्या, रोहन रॉय, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और पुलिस अधिकारियों सचिन वाजे तथा परमबीर सिंह सहित कई लोगों के नाम हैं। झारखंड में सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वायदा कर पैसे वसूले थे। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर गहरा गया है। यमन के ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने दक्षिणी सऊदी अरब के एक सैन्य हवाई अड्डे पर कई मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। सऊदी गठबंधन के अनुसार इस हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिसके बाद 4 पड़ोसी शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के पास देश के पश्चिमी तट पर अपनी स्थिति मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों ने ईरान के साथ होने वाली बातचीत को फिलहाल टाल दिया है। जानकारों का मानना है कि यदि ये टकराव और बढ़ा तो लाल सागर के रास्ते होने वाली दुनिया की तेल आपूर्ति बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। हालांकि पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस समझौते के दायरे में रखा जाएगा या क्या दोनों पक्षों ने कोई शर्त रखी है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डाक से मतदान प्रतिबंधित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों ने संघीय न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें डाक सेवा को डाक मतपत्रों से जुड़े नए नियमों को लागू करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। न्यायाधीश सैमुअल एलिटो और क्लेरेंस थॉमस ने संक्षिप्त आदेश से असहमति जताई। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी दिन भर ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में बिजली चमकने की आशंका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। तीसरा और अंतिम मुकाबला दिल्ली में ही बृहस्पतिवार को होगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। एशियाई ट्रैप चैंपियन निशानेबाज सबीरा हारिस के नेतृत्व में 20 सदस्यीय भारतीय दल आज से इटली में ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन में भाग लेगा। प्रतियोगिता का समापन 19 सितंबर को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRnews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। आज अधिकांश अखबारों ने रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन ने घटाई सैन्य तैनाती, देश फिर से चौकस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रिपोर्ट में तकनीकी बदलाव का रोड मैप बताया गया। ऑपरेशन सिंदूर से सबक, ड्रोन के 9 फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अमर उजाला ने भारत चीन में भरोसा और बढ़ा शीर्षक से चीन के विदेश मंत्री का बयान दिया है, सुधार और नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहे रिश्ते। नव भारत टाइम्स की खबर है, साइबर ठगी के आरोप पर बैंक खाते से लेन देन पर 60 दिन तक लग सकेगी रोक, RBI ला रहा नियम। हिंदुस्तान के आर्थिक पन्ने

0: की खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने करोड़ों अंशधारकों को दी बड़ी राहत। पीएफ की सूचनाएं अब व्हाट्सएप पर मिलेंगी। ईपीएफओ पोर्टल या उमंग ऐप पर बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आसान हिंदी में समझ सकेंगे लोग। कल हिंदी दिवस पर न्यायालय की नई पहल को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने लिखा है, जन सूचना सेवा में सरल हिंदी सारांश के साथ ऑडियो वीडियो बुलेटिन भी मिलेंगे। जनसत्ता की ये खबर ध्यान खींचती है। लंदन में टेम्स नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती, हजारों लोग शामिल हुए। वाराणसी के घाटों जैसी दिखी झलक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, 2000 रुपए तक के UPI भुगतान पर बैंक कोई शुल्क नहीं लेंगे। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 का आज से गुजरात के गांधीनगर में शुभारंभ। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को मजबूत और कारगर बताया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। UPI payments of up to 2,000 rupees to remain free of bank charges. World Circular Economy Forum 2026 to begin today at Gandhinagar in Gujarat. India and Canada begin next round of talks on proposed trade pact. Chief Justice of India Justice Suryakant says mechanism developed by Supreme Court and High Courts to deal with complaints against judges is robust and very responsive. CBI registers FIR in celebrity manager Disha Salian death case. And in men's cricket, second T20 international between India and Afghanistan to be played this evening in Delhi. And now the news in detail. Government has notified rules specifying that banks and payment system providers cannot impose charges on UPI transactions of up to 2,000 rupees. The Finance Ministry issued a gazette notification yesterday under the Payment and Settlement Systems Act 2007. It listed UPI transactions of up to 2,000 rupees and debit card payments made through RuPay as electronic payment modes for which customers cannot be charged. More from our correspondent.
3: According to the gazette notification issued by the Finance Ministry, no bank or system provider can impose any direct or indirect charge on a person making or receiving payments through RuPay-powered debit cards and UPI. The notification specifically categorized RuPay-powered debit cards and UPI transactions of up to 2,000 rupees as electronic modes of payment. The Ministry has notified the changes under the Payment and Settlement System Act to clarify the rules regarding charges on UPI transactions. Last month, the government clarified that consumers will not be charged for making payments through the UPI, while any future merchant discount rate will be limited to select transactions above a specified threshold. The Finance Ministry also said that all person-to-person P2P UPI transactions will continue to remain free and there will be no blanket MDR on merchant. It further said that such charges would be significantly lower than MDR applicable to debit card or credit card transactions. The clarification come amid concerns over the possibility of charges being imposed on UPI users following a recent amendment to the Payment and Settlement System Act 2007. This is Dilnashi Arzu, Akashwani News, Delhi.
2: The prestigious World Circular Economy Forum, WCEF 2026, is set to begin today at Mahatma Mandir in Gandhinagar, Gujarat. The conference, which is being held for the first time in South Asia, will be jointly inaugurated by Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel. Held under the theme Circular Economy, Transition for People and Prosperity, the event will bring together over 2,000 stakeholders from more than 65 countries. We have a report.
4: The stage is set at Mahatma Mandir in Gandhinagar for the World Circular Economy Forum 2026, marking a major milestone in promoting

संस्कृत महाकाव्य बैदेश विलास आकाशवाणी भवानी पाटणा श्रोता बंधु एथर नहीं आसीचु किसी हिंदी कथा चित्र गीत प्रथम शुणतु जिस्म चलचित्र गीतटी को कंठ दी शिल्पी श्रिया घोषाल गीत रचना नीलेश मिश्र संगीत संयोजना एम एम ग्रीन चलचित्र जिस्मी

0: प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

0: ଶେଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା। ସମୟ ସକାଳ 10:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। सरकार ने कहा है कि बैंक 2000 रुपए तक के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI लेन देन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर कोई भी शुल्क नहीं लगा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने UPI लेन देन पर शुल्क से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के अंतर्गत इन बदलावों को अधिसूचित किया है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में किए जाने वाले UPI लेन देन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। अगर भविष्य में कभी डिजिटल लेन देन पर कोई शुल्क जैसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाया भी गया तो वह केवल दुकानदारों पर लगेगा, ग्राहकों पर नहीं। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रतिष्ठित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होने जा रहा है। दक्षिण एशिया में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संयुक्त रूप से करेंगे। सम्मेलन का विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। भारत और कनाडा ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए नई दिल्ली में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी है। दोनों देश वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक बढ़ाने के प्रयास में है। 5 दिन की ये वार्ता कल से शुरू हुई जो 18 सितंबर तक चलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित तंत्र को सुदृढ़, सक्रिय, समयबद्ध और बेहद कारगर बताया है। नई दिल्ली में कल राम जेठमलानी स्मृति व्याख्यान के 6th संस्करण में उन्होंने ये बात कही। साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में निरंतर सुधार और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ये वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को एक मंच पर लाने तथा सहयोग, नवाचार, विनिर्माण, निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। झारखंड में CID ने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक संजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के रातू रोड इलाके में शिवांगन कोचिंग सेंटर चलाने वाले संजीत कुमार पर आरोप है कि उसने एजेंट के तौर पर उम्मीदवारों से परीक्षा पास कराने का वादा कर पैसे वसूले थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, हालांकि उन्होंने इसे लागू कराने से जुड़ी जानकारी नहीं दी। सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने और रूस भी ऐसा ही करने पर सहमत हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कृषि आधारित लोक पर्व नुआखाई के अवसर पर देशवासियों, विशेषकर ओडिशा के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि इस पर्व से आपसी सद्भाव और सौहार्द और मजबूत होगा। भारत और

0: ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही।
1: अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने डिफेंस सेक्टर में जो रिफॉर्म्स देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि वह अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे प्रधानमंत्री के विजन और लीडरशिप में हमने कई गेम चेंजिंग फैसले लिए हैं, चाहे वह पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट हो, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हो, आईडेक्स हो, अदिति हो, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए एलोकेशन का फैसला हो।
0: श्री सिंह ने डीआरडीओ तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: टीडीएफ के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी है। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब डीआरडीओ और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि संघर्षों और विरोधाभासों से जूझ रही दुनिया में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता उल्लेखनीय है। भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA के रजत जयंती समारोह में उन्होंने सर्वसम्मति से अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा को बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हित तेजी से दुनिया भर से जुड़ रहे हैं।
2: इंडिया टुडे, भारत का संबंध आज कहीं अधिक व्यापक देशों और क्षेत्रों से है। हमारी जिम्मेदारियां और दुनिया की भारत से अपेक्षाएं दोनों बड़ी हैं। भारत वैश्विक चुनौतियों पर अपने दृष्टिकोण को अधिक आत्मविश्वास के साथ व्यक्त कर रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका बढ़ने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हमारी बौद्धिक भागीदारी को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा।
3: आवर इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट विद इंटरनेशनल अफेयर्स मस्ट कीप पेस।
0: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। इससे पहले इसी वर्ष जून में गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में इन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना की 90% लागत केंद्र सरकार द्वारा जबकि शेष 10% लागत 6 भागीदार राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCEF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है।
5: अंडर द EPR मैकेनिज्म,
6: EPR व्यवस्था के अंतर्गत EPR प्रमाण पत्रों का हस्तांतरण पुनर्चक्रणकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नति और पुनर्चक्रण गतिविधियों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ये सभी मिलकर संपूर्ण पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजन और आजीविका में योगदान करते हैं। विभिन्न EPR ढांचों के अंतर्गत 83,000 से अधिक उत्पादक और 4,802 पुनर्चक्रणकर्ता पंजीकृत हैं।
0: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। 65 से अधिक देशों के 2000 से अधिक हितधारक इसमें भाग ले रहे हैं। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन और समृद्धि के लिए परिवर्तन। एक रिपोर्ट।
7: गांधीनगर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी कि EPR विनियमों और

0: मिशन लाइफ जैसे पहलों को भारत की चक्रीय अर्थव्यवस्था यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बताया। ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत यूरोपीय संघ सहकार में चक्रीयता के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चक्रीयता की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विकास, पारिस्थिति, समृद्धि और स्थिरता को एक साथ आगे बढ़ना होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिनिश इनोवेशन फंड सिट्रा और गुजरात सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस दो दिवसीय मंच में AI के अनुप्रयोग, हरित ऊर्जा, टिकाऊ वित्त सुशासन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विषयों पर 4 पूर्ण सत्र और 16 विषयगत सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से कहा कि नए सदस्यों की नियुक्ति होने तक अर्ध न्यायिक निकायों के सेवानिवृत्त होने वाले पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल करीब 1 महीने तक बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को एक इमारत की 12वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये प्राथमिकी बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रेजीनगर सीट से शाखाराव सरकार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम विधानसभा सीट से हसीरानी रथ पार्टी की उम्मीदवार होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति की आलोचना की। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता और सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब भारत और राष्ट्रहित की बात आती है तो किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: इंजीनियर्स भारत के विकास की सबसे बड़ी ताकतों में से एक हैं। वे देश के जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार करने के साथ साथ नई तकनीकों और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एम विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नई तकनीकों, दूरदर्शी योजना और व्यवहारिक समाधानों के जरिए देश के बुनियादी ढांचे के विकास में बड़ा योगदान दिया। आज जब भारत तेजी से तकनीकी विकास और बदलाव के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, तब इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऋषु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे, जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
3: महान इंजीनियर्स की हमारी विरासत में एक ऐसा रत्न भी हमें मिला, जिसके कार्य आज भी लोगों को अचंभित कर रहे हैं, और वे थे भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। उन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के इंजीनियर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मैं इस अवसर पर सभी इंजीनियरों को उनकी निर्माण शक्ति को आदरपूर्वक नमन करता हूं।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews पर।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूरदर्शन अपनी कई बेहतरीन सेवाओं जैसे सैटेलाइट और डायरेक्ट टू होम सर्विस के जरिए 100% आबादी तक पहुंचने

0: माध्यम है।
1: 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना के साथ भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन दूरदर्शन के पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। वर्ष 1982 में दिल्ली एशिया खेलों के दौरान रंगीन टेलीविजन की शुरुआत ने दूरदर्शन के प्रसारण और दर्शकों की संख्या को नई ऊंचाई दी। वर्तमान में दूरदर्शन के 35 सैटेलाइट चैनल और 66 स्टूडियो केंद्र हैं। ये 24 से अधिक भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन ने रामायण, भारत, हम लोग, बुनियाद, चाणक्य, मालगुडी डेज, शक्तिमान, चित्रहार, फौजी सर्कस और उड़ान जैसे कई लोकप्रिय और यादगार धारावाहिक भी प्रसारित किए। आरजू के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, कच्छ, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पुदुच्चेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता जारी की। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों में करीब 49 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल के बिहार दौरे को लेकर उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है।
3: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टीम बनाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री जी का फोन आया था कि हम लोग एक केंद्रीय टीम केंद्रीय मंत्री के स्तर पर बिहार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
2: आकाशवाणी समाचार के लिए से
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा मैच बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 74,445 पर आ गया, जबकि निफ्टी 130 अंक गिरकर 23,268 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा भारत सतत विकास के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की बैठक गांधीनगर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। अमरीकी अदालत ने विदेशी छात्रों और पत्रकारों के लिए ट्रंप प्रशासन के नए वीजा नियमों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, दिल्ली, कच्छ, तमिलनाडु, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज शाम दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
5: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
4: आबाल वृद्ध वनिता समस्तंक पाई
5: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए
4: सबुरी भाषा रे केवल आकाशवाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग सहभागिता सम्मेलन विमर्श 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि DRDO तथा उद्योग के बीच साझेदारी भारत को रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
1: TDF के माध्यम से स्टार्टअप्स को ग्रांट्स दिए जा रहे हैं और अनेक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। आईडेक्स ने भी डिफेंस इनोवेशन के लिए एक नया इकोसिस्टम भी तैयार किया है, जहां स्टार्टअप्स हमारी वास्तविक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। अब DRDO और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप केवल प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी वैल्यू चेन में साझेदारी हमें बढ़ानी हो।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि DRDO ने मिसाइल से लेकर रडार, लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय जल संसाधन सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत विकास ढांचे में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को समाहित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WCF 2026 के 10वें संस्करण के उद्घाटन में श्री यादव ने कहा कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR विनियमों और मिशन लाइफ जैसी पहलें चक्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि शिक्षा जीवन में सुधार लाने के सबसे बेहतर माध्यमों में से एक है। चेन्नई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है। उन्होंने कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में युद्ध जैसी स्थिति के कारण आर्थिक परिस्थितियां भी अस्थिर दिखाई दे रही हैं। हालांकि श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर गति से आगे बढ़ रही है तथा देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.8

प्रतिशत है। वित्त मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में कई अंतर्राष्ट्रीय निवेश हुए हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर साल 15 सितंबर को भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियरों को राष्ट्र निर्माण का कर्मयोगी बताया। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियरिंग प्रतिभा थे जिनकी राष्ट्र निर्माण की दूरदृष्टि नागरिकों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने भी एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि पर लगाई गई सख्त सीमाओं के नियम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस नीति को लागू करने से अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक नुकसान हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल जुलाई में इस नियम को अंतिम रूप दिया था। भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस लोक सेवा प्रसारक की शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत एक प्रायोगिक टेलीविजन सेवा के तौर पर हुई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में रविवार को भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: वो नहीं आने वाली, आने वाली, आने वाली। वो बेवफा निशलावत की।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। आप सबका उमंग कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आइए हमेशा की तरह पहले सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। लिखा है, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता, उसमें समय, धैर्य और तपस्या की जरूरत होती है। धन्यवाद आप दोनों का। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने लिखा है, प्रिय उद्घोषक जी मन से नमस्कार। आप दोनों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और ज्ञानवर्धक बात बताई। आपका संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद। करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू ने लिखा है, उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें भरपूर मनोरंजन तो होता ही है और इससे हमें सीख व प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आपका भी संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में अब आप सबका स्वागत है। इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कुछ घटनाएं और कुछ लोक कथाएं। ये लोक कथाएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें सुनकर यदि आप कभी किसी पेड़ के पास से गुजरें तो आप उसे सिर्फ एक पेड़ नहीं समझेंगे, आपके देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपने अक्सर उत्तराखंड के चिपकू आंदोलन और उससे जुड़ी गौरा देवी के बारे में जरूर सुना होगा। इस पर हमारा कार्यक्रम भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे चिपकू आंदोलन मूल रूप से कब शुरू हुआ। आज की कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव खेजड़ली की और एक ऐसी महिला की जिसने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन तक न्योछावर कर दिया। कहानी लगभग 300 साल पुरानी है। सन 1730 की बात है। राजस्थान की गर्म और रेगिस्तानी धरती, चारों ओर रेत और उस धरती पर जीवन

0: का सहारा बने हुए थे खेजड़ी के पेड़। एक दिन गांव में कुछ लोग पहुंचे, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं। उन्हें वहां के राजा अभय सिंह के द्वारा पेड़ों को काटने का आदेश मिला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गांव की एक महिला उनके सामने आ खड़ी हुई। उसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। उन्होंने पेड़ को अपनी बाहों में भर लिया और पेड़ काटने वालों से कहा, पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना होगा। जरा सोचिए श्रोताओं, क्या दृश्य रहा होगा। सामने कुल्हाड़ी लिए लोग और दूसरी ओर एक निहत्थी महिला। पेड़ काटने वालों ने उसे धमकाया, लेकिन अमृता देवी पीछे नहीं हटीं। उनकी तीन बेटियां भी अपनी माँ के साथ खड़ी हो गईं। और फिर जो हुआ वो भारतीय पर्यावरण इतिहास की अमर घटना बन गया। अमृता देवी का दृढ़ संकल्प देखकर गांव के लोग भी आने लगे और एक एक करके पेड़ों से चिपकने लगे। किसी ने कहा, ये पेड़ हमारे पशुओं का चारा है। किसी ने कहा, ये हमारे जीवन का सहारा है। और किसी ने शायद ये महसूस किया कि पेड़ कटेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी कट जाएगा। श्रोताओ, इसके बाद शुरू हुआ क्रूर संहार। इस बेहद दुखद आंदोलन में 363 बिश्नोई लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जब ये समाचार महाराजा तक पहुंचा, तो वे सन्न रह गए और शोक में डूब गए। अंततः खेजड़ली क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई। साथियों, आज से लगभग 300 साल पहले, जब पर्यावरण संरक्षण जैसे शब्द आम बातचीत का हिस्सा भी नहीं थे, तब इन लोगों ने प्रकृति के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हम आज कहते हैं पेड़ बचाओ, पानी बचाओ। सोशल मीडिया पर, अखबारों में ये संदेश भरे पड़े हैं। बड़ी बड़ी कार्यशालाएं होती हैं, उपदेश होते हैं, और जिसमें लोग कहते हैं पर्यावरण बचाओ। लेकिन अमृता देवी ने केवल कहा ही नहीं था, उन्होंने करके दिखाया था। अंग्रेजी की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, यानी हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी खामोशी में किए गए कार्य बोलते हैं। तो श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि अगली बार जब आप किसी पेड़ की छाया में बैठें, उसके फल खाएं, उसकी ठंडी हवा को महसूस करें, तो एक पल के लिए राजस्थान की खेजड़ली गांव की उस महिला अमृता देवी बिश्नोई को जरूर याद कीजिएगा, जिनके लिए पेड़ केवल लकड़ी मात्र नहीं थे, लेकिन वो जीवन का आधार थे। आइए सोचें, पेड़ हमारी सांस हैं, हमारे लिए शीतल छाया हैं, वे हमारे जल और मिट्टी के रक्षक हैं, और सबसे बढ़कर वे आने वाली पीढ़ियों की विरासत हैं। तो आज हम उमंग कार्यक्रम में मन की उमंग से चलते चलते एक छोटा सा संकल्प क्यों न लें। एक पेड़ को केवल लगाएंगे नहीं, उसे बड़ा भी करेंगे और उसे बचाएंगे भी। एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तर्ज पर आज हम उमंग कार्यक्रम की ओर से एक नया नारा देना चाहेंगे, पेड़ लगाओ पेड़ बढ़ाओ पेड़ बचाओ। और शायद ही यही चिपको आंदोलन की मूल माता अमृता देवी बिश्नोई को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अमृता देवी की कहानी पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में पेड़ बचाने के लिए अपना जीवन देने का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। बता दें, देश ने उनके अतुल्य बलिदान को नहीं भुलाया। आज भारत सरकार का अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, विशेषकर वन और वन्य जीवन संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो श्रोताओ, कैसी लगी हमारी प्रस्तुति, जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं, तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है द क्रो। कक्षा 2 की अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में संदेश दिया गया है कि हम अपने मूल स्वरूप में ही अच्छे हैं, किसी और से हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए।
1: हेलो चिल्ड्रन।
2: हेलो मैम।
3: हेलो मैम।
1: हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल?
2: वी आर फाइन मैम।
3: आई एम फाइन मैम, हाउ आर यू मैम?
1: आई एम गुड, थैंक यू सो मच वान्या।

0: Now, children, tell me, what did you learn from this poem?
1: Ma'am, all colors are beautiful.
0: Oh, yes. Now, let's have a little game. I'll name the bird and you will tell the color of that bird. Okay?
2: Okay, ma'am.
0: Good.
3: Yes, ma'am.
0: Good. The bird is parrot. Tell me the color.
2: Green.
0: Now, Soham will tell.
4: Green.
2: Yes, it is green. Yes.
0: Right. Now, listen to the sound of parrot. The next bird is sparrow. Now, tell me the color. Who will tell?
2: Me.
0: Navya, Vanya, Soham.
3: Me.
0: Me. Lavish.
5: Ma'am, brown.
0: You're right. Sparrow has mostly three colors. Brown, white and
2: black.
0: Right.
1: Crow is also black, ma'am.
0: Yes, black is a beautiful color. And now listen to how crow sounds.
2: Ah! Ah!
0: Now you all know about the sounds of birds.
2: Great. Yes, ma'am.
0: So children, did you like the poem?
2: Yes, ma'am.
6: We loved it.
0: Okay. And the song and the little game of birds?
2: Yes, ma'am.
0: Then let's clap for each other. Yay!
7: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सिस्टर निवेदिता। ये कार्यक्रम बंगाल की उल्लेखनीय शिक्षाविद भगिनी निवेदिता के जीवन और उनके योगदान के बारे में जानकारी देता है। कार्यक्रम बताता है कि किस प्रकार वे श्रीमती मार्गरेट नोबल के रूप में भारत में आईं और स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनकर भगिनी निवेदिता कहलाईं।
8: उत्तरी कलकत्ता के बाग बाजार मोहल्ले में एक विद्यालय है। श्री रामकृष्ण शारदा मिशन सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल। वैसे तो हमारे देश में दूसरे विद्यालयों की ही तरह

ये भी एक साधारण सा विद्यालय है, लेकिन कुछ अर्थों में ये बड़ा असाधारण भी है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस विद्यालय का प्रारंभ कुछ असाधारण लोगों के द्वारा बड़ी ही असाधारण परिस्थितियों में किया गया था। सुनना चाहते हो इसकी कहानी?

0: उनके साथ एक अंग्रेज मेम साहब भी है।
1: अरे तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा करके आया? जरा मेरी शॉल तो दे लो।
0: अच्छा बाबू।
1: और सुन
0: जी,
1: मालकिन से कह देना कि तैयार रहेगी, हैं? भगिनी निवेदिता
0: हैं?
1: अरे वही अंग्रेज मेम साहब, शायद तेरी मालकिन और चुन्नी दीदी से मिलना चाहें।
0: क्या कह रहे हैं बाबू, मालकिन भला मेम साहब से कैसे बात करेंगी? वो क्या अंग्रेजी पढ़ी लिखी है?
1: इसकी चिंता मत कर माधो, ये मेम साहब दूसरी मेमो जैसी नहीं है।
0: अच्छा?
1: हाँ, बंगला बोल लेती है। बड़ी नेम धर्म वाली है, स्वामी विवेकानंद की खास शिष्या है।
0: अच्छा?
1: अपना घर बार छोड़कर 100 समुंदर पार से यहाँ आई है, हमारी लड़कियों को पढ़ाएंगी, यहाँ कलकत्ते में एक कन्या पाठशाला खोलेंगी।
0: वो तो ठीक है, पर बाबू।
1: अरे दुष्ट, स्वामी जी को दरवाजे पर खड़ा कर रखा है और यहाँ पर कर रहा है। जा भाग यहाँ से।
0: अच्छा।
1: पहले मैं उन्हें भीतर ले आऊं। आइए आइए स्वामी जी, भीतर आइए। धन्य भाग है हमारे जो आपकी चरण रज से मेरा घर पवित्र हुआ।
2: अरे अरे, ये क्या करते हैं बोस बाबू? उठिए उठिए, माँ काली आपका कल्याण करे, इनसे मिलिए। यही वो आयरिश महिला है मिस मार्गरेट नोबल, जिनके विषय में मैंने आपसे चर्चा की थी।
1: कुटिया में आपका हार्दिक स्वागत है मिस नोबल।
3: धन्यवाद बोस बाबू, किंतु आप यदि मुझे स्वामी जी के दिए हुए नाम से पुकारें तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी।
1: यदि ऐसा है तब मैं आपको सिस्टर निवेदिता ही कहूँगा। आइए स्वामी जी, यहाँ बैठिए। आप भी बैठिए सिस्टर।
3: धन्यवाद।
2: अब बताइए बोस बाबू
1: जी,
2: क्या सलाह है? इधर बाग बाजार में स्कूल खोलने पर यहाँ के लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने भेजेंगे या नहीं?
1: देखिए स्वामी जी, मैंने इस बारे में कई लोगों से बात की है। जो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाना भी चाहते हैं, वो भी समाज के जड़ से उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है।
3: अरे, अगर कोई आदमी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहता है तो इसमें समाज का क्या नुकसान है?
1: नुकसान तो है ही सिस्टर, पुराने लोगों को डर है कि यदि लड़कियां पढ़ गई तो फिर अपनी बुद्धि से सोच सकेंगी, अपना भला बुरा समझ सकेंगी, तब वे समाज से अपनी दुर्दशा का कारण पूछने लगेंगी, समाज की हर गलत सही और उल्टी सीधी प्रथा को मानने से इनकार करने लगेंगी, तब फिर इस अंधे समाज का क्या होगा? समाज में तो हाहाकार मच जाएगा ना।
3: कैसी बातें कर रहे हैं आप बोस बाबू, जब परिवार की बहु बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो उससे तो पूरे समाज का लाभ होगा ना।
1: देखिए सिस्टर, ये बात मैं समझता हूँ, कुछ और पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग न तो इस बात को समझता है और न मानने को तैयार है।
3: तब क्या ये स्कूल नहीं खुल सकेगा?
2: खुल सकेगा और खुलेगा। जिस कार्य के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, माँ बहन भाई मित्र सहयोगी सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आई हो, तुम्हारा वो कार्य अवश्य सिद्ध होगा, तुम्हारा विद्यालय अवश्य खुलेगा।
3: लेकिन वो शुभ दिन कब आएगा स्वामी जी?
2: उतावली ना हो निवेदिता, हर काम का समय निश्चित होता है। हाँ तो बोस बाबू
1: जी,
2: यहीं बोसपाड़ा में अगर कोई छोटा मोटा मकान किराए पर मिल जाए तो उसमें निवेदिता अपना विद्यालय खोल सकेंगी।
1: मकान की व्यवस्था आप मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए स्वामी जी, किंतु मेम साहब के पास घर का कामकाज करने के लिए कोई स्त्री तैयार होगी या नहीं, इस विषय
2: वो व्यवस्था हो गई है। माँ शारदा मणि के पास एक वृद्धा ब्राह्मणी आती थी, गोपाल की माँ, उससे माँ ने कहा तो वो निवेदिता का खाना बनाने और घर द्वार संभालने के लिए राजी हो गई।
1: चलिए, तब तो ये चिंता भी दूर हुई। अब केवल

0: के लिए छात्राओं की व्यवस्था कर दी है। बस एक छात्रा तो मेरे घर में भी है, मेरी छोटी लड़की चुन्नी। मैं चाहता हूँ कि वो भी कुछ पढ़ना लिखना सीख ले, पर उसकी माँ किसी भी तरह तैयार नहीं होती। कहती है कि अगर चुन्नी पढ़ लिख गई तो फिर कोई उससे शादी नहीं करेगा।
1: अरे वाह, ये तो उल्टी बात हुई। आजकल के पढ़े लिखे युवक तो चाहते हैं कि उनकी पत्नी भी पढ़ी हो। बोस बाबू, आप मुझे एक बार मिसेस बोस से मिलवा सकते हैं? शायद मैं उन्हें चुन्नी को स्कूल भेजने के लिए राजी कर सकूं।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए, मैं आपको भीतर ले चलता हूँ।
2: जाओ निवेदिता, शायद ये चुन्नी ही तुम्हारी पहली शिष्या हो।
3: इस तरह स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से और बलराम बोस जैसे कुछ और समझदार लोगों के सहयोग से 13 नवंबर 1898 को बाग बाजार के बोस पाड़ा लेन के एक छोटे से मकान में निवेदिता ने अपनी कन्या पाठशाला का शुभारंभ किया। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदामणि भी इस अवसर पर उपस्थित थी। निवेदिता अपनी थोड़ी सी छात्राओं को केवल लिखना पढ़ना ही नहीं अपितु चित्र बनाना, सीना पिरोना, हिसाब किताब रखना, सभी कुछ सिखाकर उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना चाहती थी। लेकिन परंपरागत शिक्षा के आदि लड़कियों के माता पिता शिक्षा के इस ढंग को बिल्कुल समझ नहीं पाए।
4: गुड मॉर्निंग गर्ल्स।
5: गुड मॉर्निंग दीदी।
1: ये सुभाषिनी आज फिर नहीं आई, क्या बात है, बीमार तो नहीं पड़ गई? चारू, तुम गई थी उसके घर?
6: हाँ दीदी, आज मैं उसके घर गई थी। उसकी माँ कहने लगी, इश, ये कैसा स्कूल है जी तुम्हारा, वहाँ हम लड़की को पढ़ने भेजते हैं या खिलौनों से खेलने?
1: फिर तुमने क्या कहा?
6: मैंने कहा कि हमारी निवेदिता दीदी खिलौनों से खेलने को कहती हैं, और फिर ना जाने कैसे खेल खेल में हमें बहुत सारी बातें सिखा देती हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता। इस पर वो बोली कि आज वो स्वयं आपसे मिलने आएंगी।
1: अच्छा ठीक है, तुम तो आज हमें अल्पना बनाकर दिखाने वाली थी ना चारू?
6: हाँ दीदी।
1: ये लो कागज और रंगीन पेंसिल, एक सुंदर सी अल्पना बनाकर उस पर अपना नाम लिखो। और चुन्नी, तुम मुझे कल वाली कविता सुनाओ तो।
7: क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
6: दीदी, ये माशी माँ है, सुभाषिनी की माँ।
1: आइए आइए ना माँ, वहाँ द्वार पर ही क्यों खड़ी है, भीतर आइए ना। जाते चारू, माशी माँ के लिए एक आसन तो ले आ।
6: अच्छा दीदी।
1: नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप हमारे विद्यालय की पहली अतिथि हैं, हम आपको ऐसे खड़े खड़े ही थोड़ी लौट जाने देंगे।
6: दीदी ये लीजिए आसन।
1: बैठिए ना माँ। सुभाषिनी कहती है आप बहुत सुंदर गाती हैं, आप हमारी लड़कियों को चंडीदास के एक दो गीत जरूर सुना कर जाइएगा। किंतु मेरे गाने से इनकी पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा? क्या कहती है माँ, आप गीता भागवत का पाठ करती हैं तो उनसे आपको कुछ नहीं मिलता?
8: क्यों नहीं मिलता, जो गीता का उपदेश समझ ले उसका तो जीवन ही सुधर जाए।
1: वही तो मैं भी कहती हूँ, शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान थोड़ी है, शिक्षा का मतलब है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। आप जो घर में सुभाषिनी को अल्पना बनाना सिखाती हैं, उसे पहनने ओढ़ने का सलीका सिखाती हैं, वो भी तो शिक्षा ही है ना माँ?
8: हाँ वो तो है।
1: मेरी लड़कियाँ जीवन के हर पक्ष से, हर रंग से शिक्षा प्राप्त करती हैं, मैंने इसीलिए ये स्कूल खोला है माँ। अच्छा, आजकल सुभाषिनी नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है ना उसकी?
8: तबीयत तो ठीक है।
1: अच्छा मेम दीदी, अब मैं चलूँगी,
8: कल से सुभाषिनी स्कूल आएगी और मैं देखूँगी आस पड़ोस की और लड़कियाँ भी राजी हो जाएं तो।
1: ये तो बड़ा उपकार होगा मुझ पर।
3: निवेदिता के सौम्य, सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार से उनके विद्यालय की छात्राएं और आस पड़ोस की स्त्रियां बड़ी प्रभावित हुईं।

उन्होंने कलकत्ता में स्त्री शिक्षा का जो नन्ना सा दीप जलाया था वो बढ़कर एक अखंड ज्योति में परिवर्तित हो गया। पर निवेदिता सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं थी, वे चाह

चाहती थी कि भारत मुक्त हो, अज्ञान से मुक्त हो, निर्धनता से मुक्त हो और विदेशी दासता से मुक्त हो। उनका घर बंगाल के कितने ही क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल था और उस समय जब वंदे मातरम का उच्चारण भी अपराध समझा जाता था, निवेदिता के विद्यालय में प्रतिदिन सरस्वती वंदना के साथ वंदे मातरम का स्वर भी गूंजता था।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: प्रचारकलु एनसीईआरटी ओ सीआईटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आपण कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी भवानीपाटना केन्द्र समय अपराह 5:30 श्रोताबंधु कार्यक्रम संपर्कित घोषणा शुणिपारे यह विज्ञापन पर
3: कम सुधारे लोन दरकार ताबी ऐप रे बाहा
4: फसिला अजना ऐप तरु दूरै रहंतु
5: आरबीआई कहे
6: सचेतन हुंतु सतर्क रहंतु
7: कण आपण आईटीआई प्लस टू डिप्लोमा किंबा बीटेक कंप्लीट करिबा परे निज करियर बूस्ट करबा को चाहछंती
8: तेबे स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिसा द्वारा वर्ल्ड स्किल सेंटर रे 1 ईयर एडवांस स्किल डेवलपमेंट कोर्स रे भाग नियंतु जेउथिरे आपनको मिलिबा इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग ग्लोबल एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज ओ 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस
7: बैच 10 सेप्टेंबर 26-27 एडमिशन आरंभ होई सारिछि आवेदनर शेष तारीख 30 सेप्टेंबर 2000
8: अधिक जानिबा पई विजिट करंतु www.worldskillcenter.org किंबा कॉल करंतु 1-800-266-002
9: बापा दियो 3000
10: काहे की
9: मोरो पॉकेट मनी
10: अरे एबे मात्र 2000 कैश अछि
9: अरे बापा बुलेट ट्रेन जुगरे सगड़ो चलहु छ डिजिटल पेमेंट चलाओ है नुहे हाँ सीधा यूपीआई रु पेमेंट करो एटा सहज
10: अरे बा मते भी सिखा निजर 1000 नहीं जा
9: तम मोबाइल दियो
10: नहीं जा
11: भारत करे डिजिटल देय प्रदान
12: सहज अटे प्रतिदिन नेण देण
2: आकाशवाणी भनी पटना श्रोता बंधु प्रचार करछु युव श्रोता बंधु मानक पई कार्यक्रम युववाणी आज युववाणी रे सुणंतु गीतटीए मिटेतीएर फोनइन कार्यक्रम सीधा प्रसारण श्रोताबंधु ये आम आपको नहीं जाऊँ आम टॉक स्टूडियो को

0: समृद्ध ओडिशार ए विशेष आलोचनाकु आपण मानकु स्वागत करुछि मु आशुतोष
1: आउ मु दिबालिन आज आमे एभली एक विषय उपरे आलोचना करिबा जहां ग्रामीण महिलांक उद्योग को आहुरी आगकु नबारे सहायक हेबो
0: अर्थात आचार प्रस्तुति सिलेई हस्तशिल्प खाद्य प्रक्रियाकरण भली महिला परिचालित उद्योग गुडीक पई कणे एक बड़ सुजोग
1: निश्चय ओडिशा जीविका मिशन एवं आईआईटी भुवनेश्वर मिलित सहयोग रे परिचालित उद्यम अंकुरण कार्यक्रम माध्यम रे उद्योगींकु मिलिब आधुनिक प्रजुक्ति उन्नत पैकेजिंग ब्रांडिंग बजार संजोग एवं विशेषज्ञक मार्गदर्शन
0: अच्छा जदि के नुआ व्यवसाय आरंभ करबाकु चाहंती से कोन ही कार्यक्रम रे आवेदन करि परिबे
1: ना एही कार्यक्रम टी सक्रिय थिबा महिला परिचालित उद्योग गुडीकर विकास पई आवेदनकारी अति कम रे 12 मास धरी सक्रिय थिबा स्वयं सहायक गोष्ठीर सदस्य होइथिबा आवश्यक
0: एहा द्वारा केउ माने लाभान्वित होइ परिबे
1: व्यवसायर वार्षिक आय पई निर्धारित मानदंड पूरण करबाकु हेबो पंजीकृत व्यवसाय पई 20 लाख टंका गोष्ठी भित्तिक उद्योग पई 15 लाख टंका एवं व्यक्तिगत उद्योग पई 12 लाख टंका वार्षिक आय रहिबा आवश्यक
0: जदि जीएसटी एफएसएस एआई किंबा अन्यान्य पंजीकरण आवश्यक हुए सेति पई कोन सहायता रहिछि
1: एही प्रोग्राम माध्यम रे वैषयिक ओ आइनगत सहायता प्रदान करा जिवो एहा सह व्यवसाय परामर्श उत्पादर गुणवत्ता वृद्धि एवं बड़ बजार सह संजोगर सुजोग मध्य मिलिबो
0: तबे उद्योग गुडीकर चयन केउ आधार रे करा जिवो
1: उद्योग गुडीकु 100 मार्क रो मूल्यांकन आधार रे चयन करा जिवो एथिरे सर्वनिम्न 60 मार्क रखिबा आवश्यक संपूर्ण महिलांक मालिकाना किंबा परिचालन रे थिबा उद्योग कु 15 मार्क रो अतिरिक्त सुविधा मध्य मिलिबो
0: चयन परे केउ प्रकार रो सहायता मिलिबो
1: चयन करा जाइथिबा 18 जन उद्योगींकु प्रतियोगिता मूलक अनुदान पांठी अधीन रे निजरा व्यवसाय योजना उपस्थापन करी 15 लाख टंका पर्यंत अनुदान पाई परिबे एहा सह व्यवसाय विस्तार पई 0% सुद्ध रे सॉफ्ट लोन सुविधा मध्य उपलब्ध रहिछि
0: तबे आवेदन किपरि करा जिवो
1: एति पई ग्राम पंचायत स्तरीय संघ माध्यम रे किंबा सीधा सडक मध्य आवेदन करि परिबे आवेदन रो शेष तारीख 21 सेप्टेम्बर 2026
0: पुणि थरे मने रखंतु 21 सेप्टेम्बर 2026
1: योग्य महिला उद्योगी माने शेष मुहूर्त को अपेक्षा न करी शीघ्र आवेदन करंतु आजिरो छोट ग्रामीण उद्योग होई पारे आसंता कालीरो बड़ ब्रांड
0: कौशल तांकर उद्यम तांकर एबे सफलतार परिचय मध्य तांकर
2: सशक्त महिला समृद्ध ओडिशा
3: ଶୁଣିଲେ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଇନ୍କ୍ୟୁବେସନ୍ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ
4: ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର ଖୋଲୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା କେନ୍ଦ୍ରରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ମିଡିୟମ୍ ୱେବ୍ରେ 248 ମିଟର ତଥା 1206 କିଲୋହର୍ଟ୍ସ ଏଫ୍ଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 103.3 ମେଗାହର୍ଟ୍ସ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର୍ ଏଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: हेलो
3: हेलो
2: किए
4: आपण को सह किछि मीठा मीठा कथा किछि अनुभव किछि अनुभूति रा कथा
2: आम सह कथा हुंतु फोन माध्यम रे प्रत्येक गुरुवार दिन 11:30 पर्यंत
4: आम फोन नंबर हैला
5: 0667029562329568।
2: मने रखंतु 0667029562329568 एवं एहार प्रसारण सुनंतु प्रत्येक रविवार दिन 9:30 पर्यंत। हेलो
3: हेलो
2: किए
4: हेलो आकाशवाणी भवानी पाटना।

0: ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଲିପ୍ ବିରୋଧରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଆକାଶବାଣୀ। ଏହିପରି ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ବ୍ୟବସାୟର ବିକାଶରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: आकाशवाणी भवानीपाटणा समय संध्या 6:20 हो संस्कृत संवाद शुणु आकाशवाणी दिल्ली रो।
4: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। नवदिल्ल्या प्रतिपादितं यत् खातिप्रदेश

0: किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: ए पर्यंत एही योजना रे 8,85,00,000 रु अधिक लाभार्थी जुड़ी ही सारिलेनी। जदि आपण 18 रु 40 वर्ष बयसर होइथांती तेबे मासिक अटल पेंशन सहित तीनोटी ग्यारंटेड सुविधा विषय रे जानिबा पई आपणक बैंक शाखा सह जोगाजोग करंतु।

केते मान्य गुण्य पूज्य देवतांकु सष्टांगे पादे स्वरण केते मान्य गुण्य पूज्य देवतांकु सष्टांगे पादे स्वरण जे जाहार बाद्य करई कीर्तन संकीर्तन जे जाहार बाद्य करई तांडव

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: ए बैठक घरे कोन का देखा दर्शन नाही, से दामो परा मते डाकी के आसिला, अपा चालो मु जाउची, कुआडे छुआटा रही गला के जानी, आज आसु तार दिन को मोर दिन।
6: ए जेमा अपा जुहारे जुहारे।
5: ये दामगिरे।
6: हां परा अपा टिके हेई गला विलंब कोन करबी अपा।
5: मते तो डाकी देके आसिलो, काहा पाखरे लाखी गलो की?
6: एई आमर रमेश सी देखा आइला शहर रु फेरिची, ता संगे टिके गपसप करूथिली अपा।
5: ओहो से बस आसी तो लागिला, मु देखिची के जने ओलेला, हेले तुमको देखी पारले नी, हेले दाम आ तुमर काली गाय जन्म करची काली।
6: हां हां भारी खुशी सेति पाई अपा।
5: हां तुमे 4-5 टी गाय रखिछ, चासवास करूछ, हेले तुमरी परी पिला यदि चास खेत को आसीबे, चासवास समस्ते करिबे, सम्मानित कृषि करिबे, आ ताहले चास आगे ही चलिबो।
6: हां परा अपा, हेले अपा आज को दिन तमर मने नाही की?
5: आज मंगलवार, ता सहित पश्चिम ओडिसा रा गण पर्व नुआ खाई।
6: नुआ खाई? हां पा
5: भलो दिन टिए मो
6: आज्ञा।
5: से माने बहुत भलो भाबरे आज रो दिन को पालन करंती।
6: हां हां
5: समस्ते नवान्न भक्षण करंती।
6: आ
5: एई दिन हमर नुआ खाई दिन, तांकर सब ठाकुर पाखरे खाद्य भोग लगा जाय।
6: सते ना गण?
5: हां केतक जगह रे दशहरा रे चूड़ा भोग होई थाय ठाकुरंग पाखरे, आ केतक जगह रे मार्गशीर मास रे नुआ चावल रे से माने भोग तयारी करथांती। हमर पश्चिम ओडिसा रे नुआ खाई माने तांकर गोडे बडो गण पर्व, से माने नुआ पिनी थांती, ठाकुरंग पाखरे नुआ नुआ खाद्य सब भोग लगा जाय, माने नुआ खांती।
6: ताले सब जिनिस नुआ आज ठुई आरंभ करंती आउ
5: एठी परा बडो मानकु जुहार करथांती समस्ते।
6: हां परापा
5: हेले एई सब गण पर्व अछि बोले समस्तक भितरे स्नेह आदर भरे कि अछि, पर्व परवाणी हेले आम घर मान करे बा आम अंचल मान करे समस्त एकत्रित होवंती।
6: हां परापा एई एकत्रित होउ होउ त भाईचाराटा बढे औ
5: समस्ते समस्तक भितरे स्नेह आदर रे बांधिए कि रुहंती,
6: बांधिए रुहंती अपा।
5: एथि पई परा पूजा पार्वण रहिछि, ओसा बार रहिछि, हेई त तुमे देखुछ गणेश पूजा सारिछ, हई केडे बडो मूर्ति करिछ, पुनी लिचि लाइट सजेइछ, नाच गीत करिलो भारी बढ़िया हला, तुमर त एबे 8 दिन खाली चालिबो।
6: हां करिबा पा, आइ जीवन नै कि त एमिति टिके आमोद प्रमोद नकले आउ कोन अछि किछि जीवन रे।
5: हे दाम पुनी हेई विश्वकर्मा पूजा सेति पुनी ताकु सेति सजेइछ ठाकुर को पूजा करिवो, भलो हला तमे पिल्ला माने एमिति जदि भलो भाबरे पूजा पार्वण ओसा व्रत करिवो ताले तुमे माने भी एकत्रित हेई कि रहिबो, छुआ मानकु पूजा पार्वण विषय रे बुझेइबो, एमिति हेले आमो अंचल बे परिष्कार परिच्छन रखुछ।
6: परिष्कार परिच्छन माने आमे पर्व परवाणी हेला माने सबु आमरो युवक माने लागी पडंती केमिति परिष्कार परिच्छन हबो, केमिति तोरण सजा हबो।
5: हेले दामो
6: हां
5: आउ गोटे कथा मने रखिथिबो, एई

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का यह नया रंग जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मुकाबला जारी। जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला हरारे में खेला जा रहा है। ब्रेंडल टेनर ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए भारत की 18 सदस्यीय टीम की घोषणा। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने मिजोरम स्पोर्ट्स इकोसिस्टम की समीक्षा की। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार अफ्रीका में आयोजित होगी। केनिया को 2029 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी मिली।

0: जा रहा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ही खेला जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। क्या मौजूदा स्थिति है इस मुकाबले की विशेष?
1: प्रशांत, अगर मुकाबले की बात करें तो भारत का दबदबा एक बार फिर से देखने को मिला है। भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला करके अफगानिस्तान को बिल्कुल बैक फुट पर रखा है। अफगानिस्तान ने 13.5 गेंदों में 97 रन पर 5 विकेट गंवा दिए हैं और अभी दारविश रसूली और मोहम्मद नबी क्रीज पर मौजूद हैं।
0: 97 रन पर 5 विकेट अफगानिस्तान के हो गए। और किन बल्लेबाजों ने कैसा किया है प्रदर्शन अफगानिस्तान का आज के मुकाबले में विशेष?
1: अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान ने अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश करी, लेकिन अपने स्टार्ट को वो बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए और उन्होंने 33 गेंदों पर 37 रन बनाए जिसमें 6 चौके शामिल थे। इसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज 0 पर आउट हो गए और सिद्दीकुल्लाह अटल 12 ही रन बना सके। उसके बाद गुलबदीन नाइब भी 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अजमतुल्लाह उमर जाई, जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था, वो भी इस मुकाबले में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर सके।
0: और अगर भारतीय गेंदबाजों की बात की जाए तो पिछले मुकाबलों में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। आज कैसा रहा है भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन अब तक?
1: प्रशांत, जसप्रीत बुमराह की जो कसी हुई गेंदबाजी है उसका रिवॉर्ड मिला है अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, इन सभी को। बुमराह ने 2 ओवर में 1 मेडन डाला है और 9 रन दिए हैं। केवल 4.5 की इकोनॉमी से उन्होंने गेंदबाजी की है। वहीं अर्शदीप की बात करें तो उन्होंने 2 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है और अक्षर पटेल अपना स्पेल समाप्त कर चुके हैं। 4 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट लिया उन्होंने। रवि बिश्नोई ने भी आज अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है, जिन्होंने 3 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट लिया है। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी भारतीय टीम की काफी सारी उम्मीदों को आगे लेकर जाते हुए 2 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट लिए।
0: कई खिलाड़ियों की वापसी हुई और श्रोताओं को बता दें कि अफगानिस्तान ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 100 रन बना लिए। और विशेष, अगर भारतीय टीम की बात की जाए, इस श्रृंखला से वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण बाहर हो गए। कितना चिंताजनक है ये खबर भारतीय टीम के दृष्टिकोण से?
1: जाहिर तौर पर प्रशांत, ये खबर भारतीय प्रशंसकों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि चोट के बाद जब वरुण ने श्रृंखला के पहले मुकाबले में वापसी की थी तो दमदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 4 ओवर में महज 4 की इकोनॉमी रेट से 16 रन देकर 1 विकेट लिया था। और प्रशांत, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एशियन गेम्स में भी वरुण के खेलने पर अभी संशय बना हुआ है।
0: अब चलते हैं सीधे जिम्बाब्वे के हरारे में, जहां जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट पर 294 रन बनाए। मैट रनशो ने सर्वाधिक 109 रन की शतकीय पारी खेली। कूपर कॉनली ने 51 रन का अहम योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। 3 मैचों के श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 18 सितंबर और तीसरा और आखिरी मैच 20 सितंबर को खेला जाएगा। विशेष, पहले मुकाबले की अगर बात की जाए तो बहुत ही रोमांचक मोड़ पर है, और क्या हाल है इस वक्त मुकाबले का?
1: प्रशांत, अभी जिम्बाब्वे जो है उनको जीत के लिए 51 गेंदों पर 80 रन की जरूरत है। जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आई थी उनकी टीम, तो ऑस्ट्रेलिया की पारी लड़खड़ाती हुई नजर आई थी। 107 रन पर 4 विकेट उन्होंने गंवा दिए थे, लेकिन मैट रेनशॉ ने अपनी शानदार शतकीय पारी से ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और साथ ही साथ उनको 294 रन के बड़े स्कोर तक ले जाने में अहम योगदान दिया। उनका साथ निभाया ओलिवर पीक ने और एलेक्स कैरी ने, जिन्होंने अहम साझेदारियां करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अगर बात करें अभी हम जिम्बाब्वे की, तो वहां उनके जो मुख्य खिलाड़ी रहे उन्होंने ज्यादा कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। कप्तान सिकंदर रजा ने 76 गेंदों पर 57 रन बनाए। वो चाहते तो एक बड़ी पारी खेलने की और कोशिश कर सकते थे और जिम्बाब्वे को एक अच्छी स्थिति में ले जा सकते थे, लेकिन अभी ब्रेड इवांस और वेलिंगटन मसगाडजा क्रीज पर मौजूद हैं और एक तरह से औपचारिकता ही बची है इस मुकाबले में।
0: जी,
1: ऑस्ट्रेलिया जो है पूरी तरह से हावी है।
0: विशेष, आज के मुकाबले में कई रिकॉर्ड बने हैं, सचिन का भी रिकॉर्ड टूटा है।
1: जी बिल्कुल प्रशांत, आज ब्रेंडन टेलर ने सचिन तेंदुलकर के सबसे लंबे वनडे करियर का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है।
0: जी,
1: टेलर ने 2004 में डेब्यू किया था और उनका वनडे करियर अब तक 22 साल 146 दिन का हो गया है।
0: जी,
1: सचिन का जो करियर रहा वो 22 साल और 91 दिन का था। टेलर जिम्बाब्वे के सबसे सफल बल्लेबाजों में से भी एक है। अपने वनडे करियर में टेलर 205 पारियों में 6704 रन बना चुके हैं। वहीं जिम्बाब्वे की ओर से दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनसे आगे सिर्फ एंडी फ्लावर हैं, जिन्होंने सर्वाधिक 6786 रन बनाए हैं।
0: और विशेष, मुकाबले में और कौन सा रिकॉर्ड ध्वस्त हुआ आज?
1: एक यूनिक रिकॉर्ड बना

0: है प्रशांत, आज मैट रेनशॉ ने आज जो है अपने करियर का पहला वनडे शतक तो लगाया ही, साथ ही साथ जिम्बाब्वे की धरती पर ओडीआई का सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं, और इसके साथ ही वह जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं।
1: अब देखना दिलचस्प होगा कि मुकाबला किस ओर रुख लेता है। अहमदाबाद पहली बार कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए तैयार है। आयोजन भारत में होने जा रहा है, जिसके दूसरे संस्करण के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। ये चैंपियनशिप 7 से 10 अक्टूबर तक वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस प्रतियोगिता में इंग्लिश बिलियर्ड्स, स्नूकर, 10 बॉल पूल, हे बॉल और ब्लैक बॉल जैसे लगभग 46 कॉमनवेल्थ देशों के क्यू खिलाड़ी एक साथ आएंगे। वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के समर्थन से आयोजित यह टूर्नामेंट BSFI के 100 साल पूरे होने के समारोह का भी प्रमुख आकर्षण होगा। 2025 में मॉरिशस में पहले संस्करण में 5 मेडल जीतने के बाद

0: पहली बार कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेज़बानी के लिए तैयार है। आयोजन भारत में होने जा रहा है, जिसके दूसरे संस्करण के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। ये चैंपियनशिप 7 से 10 अक्टूबर तक वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। एक रिपोर्ट।
1: इस प्रतियोगिता में इंग्लिश बिलियर्ड्स, स्नूकर, टेन बॉल पूल, हे बॉल और ब्लैक बॉल जैसे लगभग 46 कॉमनवेल्थ देशों के क्यू खिलाड़ी एक साथ आएंगे। वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के समर्थन से आयोजित यह टूर्नामेंट BSFI के 100 साल पूरे होने के समारोह का भी प्रमुख आकर्षण होगा। 2025 में मॉरिशस में पहले संस्करण में 5 मेडल जीतने के बाद भारत कॉन्फिडेंस के साथ चैंपियनशिप में उतरेगा, जिसमें विमेन्स हेबॉल में विद्या पिल्लई का गोल्ड और मेन्स हेबॉल में शिवम अरोड़ा और विमेन्स टेन बॉल पूल में चित्रा मगी माई राज के सिल्वर मेडल शामिल हैं। तीनों मेडलिस्ट को इस साल की चैंपियनशिप में डायरेक्ट एंट्री मिली है। भारत की सबसे बड़ी मेडल उम्मीदों में से एक विद्या पिल्लई है, जो मौजूदा कॉमनवेल्थ विमेन्स हेबॉल चैंपियन है, जिन्होंने पिछले साल मॉरिशस में साउथ अफ्रीका की मरीना जैकब्स पर एक शानदार शूटआउट में जीत हासिल करके गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय टीम में जाने माने इंटरनेशनल परफॉर्मर और उभरते हुए टैलेंट का भी अच्छा मिश्रण है। महिलाओं के दल में मौजूदा IBSF महिला वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन अनुपमा रामचंद्रन, रेवन्ना उमा देवी के साथ भारत के इंग्लिश बिलियर्ड्स चुनौती का नेतृत्व करेंगी, जबकि 2026 एशियाई महिला स्नूकर चैंपियन कीर्तना पांड्यान, श्रुति लक्ष्मी नारायणन और इशिका शाह के साथ स्नूकर में देश के अभियान का नेतृत्व करेंगी। पुरुषों की टीम में सिद्धार्थ पारेख, लक्ष्मण रावत और संदीप गुलाटी जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही युवा टैलेंट रियान रजमी और पारस गुप्ता भी हैं। चैंपियनशिप में पुरुषों और महिलाओं के 10 मेडल सेट होंगे, जिनमें बिलियर्ड्स इस साल कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप प्रोग्राम में पहली बार शामिल होगा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने आइजोल के अपने दौरे के दौरान मिजोरम में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का रिव्यू किया। इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, एथलीटों को सपोर्ट करने और नॉर्थ ईस्ट के स्पोर्ट्स टैलेंट के लिए ज्यादा मौके बनाने पर बल दिया।
2: We need to develop sports infrastructure as well as our youth also, because our youth is the future of the India and for Vikasit Bharat. So from central government and always our prime minister are trying to build youth for nation building.
0: ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें देश में मजबूत खेल संस्कृति विकसित करने और युवाओं को आगे बढ़ाने के ज्यादा मौके देने की बात कही गई थी। रक्षा खडसे ने आइजोल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंटर का भी दौरा किया और एथलीटों, कोच और स्पोर्ट्स स्टाफ से बातचीत की। एथलीटों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उनकी ट्रेनिंग, प्रतिस्पर्धी अनुभवों और उम्मीदों के बारे में सुना और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उनके समर्पण की सराहना की। पर अब बात करते हैं एथलेटिक्स पर। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार अफ्रीका में आयोजित होगी। केन्या के नैरोबी को 2029 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। वहीं जर्मनी के म्यूनिक शहर को 2031 संस्करण की मेजबानी सौंपी गई है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आयोजन का फैसला बुडापेस्ट में हुई 242वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल की बैठक में लिया गया। केन्या की राजधानी नैरोबी ने रोम, म्यूनिक और लंदन जैसी मजबूत दावेदारियों को पीछे छोड़ते हुए मेजबानी हासिल की। अफ्रीकी देश पहले भी कई मल्टीनेशनल इवेंट्स होस्ट करते रहे हैं। युगांडा के कंपाला ने 2017 में वर्ल्ड क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होस्ट की थी। इससे पहले नैरोबी ने उसी साल वर्ल्ड अंडर 18 चैंपियनशिप की मेजबानी भी की थी। बोत्सवाना के गेबोरोन ने इस साल की शुरुआत में वर्ल्ड एथलेटिक्स रिलीज की मेजबानी की थी, जो अफ्रीका में होने वाला उस इवेंट का पहला एडिशन था। हालांकि ये पहली बार होगा जब ओलंपिक के बाद एथलेटिक्स का सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप किसी अफ्रीकी देश में होगा। केन्या वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में दूसरा सबसे सफल देश है। जर्मनी 2031 में तीसरी बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का अगला संस्करण 10 से 19 सितंबर 2027 तक पेइचिंग में आयोजित होगा। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात कार्यक्रम में एशियन गेम्स की। एशियन गेम्स की शुरुआत 1951 में भारत की मेजबानी में हुई थी। इस वर्ष एशियन गेम्स के 20वें संस्करण का आयोजन

0: आयोजन जापान के आईची नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक किया जाएगा। भारतीय टीम जापान में दमदार प्रदर्शन के लिए तैयार है। आइए जानते हैं एशियन गेम्स में कैसा रहा है भारत का सफर, किस खेल और खिलाड़ी के नाम सर्वाधिक पदक रहे हैं।
1: 1951 में आयोजित एशियन गेम्स में 11 देशों ने हिस्सा लिया था। अब ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA के सभी 45 सदस्य देश नियमित तौर पर एशियन गेम्स में हिस्सा लेते हैं। कुछ विशेष आमंत्रित टीमें भी होती हैं। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो एशियन गेम्स के हर संस्करण का हिस्सा रहा है। भारतीय एथलीटों ने एशियन गेम्स में अपने दमदार प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया है और पूरी दुनिया में अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है। भारत ने 1951 में आयोजित पहले एशियन गेम्स में 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य सहित कुल 51 पदक जीते थे। वहीं हांगझोउ में आयोजित एशियन गेम्स 2022 में भारतीय टीम ने 28 स्वर्ण, 38 रजत और 40 कांस्य सहित कुल 106 पदक जीते और चौथी सफल टीम रही थी। हांगझोउ एशियन गेम्स भारत के लिए अब तक के सबसे सफल खेल रहे हैं। एशियन गेम्स के इतिहास में भारत सर्वाधिक पदक जीतने वाले देशों की सूची में 5वें स्थान पर है। भारत ने पिछले 19 संस्करणों में 183 स्वर्ण, 238 रजत और 357 कांस्य सहित कुल 778 पदक जीते हैं। भारत को एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा पदक एथलेटिक्स में मिले हैं। एथलेटिक्स में 85 स्वर्ण, 102 रजत और 96 कांस्य सहित भारत ने कुल 283 पदक अपने नाम किए। इसके अलावा भारत को निशानेबाजी में 80, कुश्ती में 65 और मुक्केबाजी में 61 पदक मिले हैं। एशियन गेम्स के इतिहास में भारत की सबसे सफल एथलीट PT उषा रही है। PT उषा ने 4 स्वर्ण और 7 रजत सहित कुल 11 पदक जीते हैं। सर्वाधिक पदक जीतने वाले देशों में पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया और ईरान चौथे स्थान पर है। चीन ने 1674 स्वर्ण, 1105 रजत और 791 कांस्य सहित 3570 पदक जीते हैं। जापान ने 1084 स्वर्ण, 1104 रजत और 1054 कांस्य पदक सहित कुल 3242 पदकों पर अपना कब्जा जमाया है। भारतीय दल हांगझोउ एशियन गेम्स के सर्वाधिक 106 पदकों के रिकॉर्ड को भी और बेहतर करने की कोशिश करेगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और चलते चलते श्रोताओं, आपको बता दें कि अफगानिस्तान ने 17वें ओवर में 6 विकेट पर 118 रन बना लिए। मोहम्मद नबी 14 और राशिद खान 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। और इस वक्त जसप्रीत बुमराह अपना तीसरा ओवर लेकर भारत के लिए लेके आए। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत ने कहा, चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य, लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, लोगों से व्यापारियों को 2000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
3: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
2: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग द्विपक्षीय साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु

0: क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। सम्मेलन से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सऊदी अरब के विदेश मंत्री की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने हौसी विद्रोहियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब पर हाल के हौसी हमले की निंदा की। भारत लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से बेहद चिंतित है। श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
1: 50 के लगभग आउटकम्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और ये सब विकास आधारित आउटकम्स हैं, और इन सभी पे लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। जब अर्बन मोबिलिटी की बात कही है, वहाँ भी हमारे देश में कई एक और ब्रिक्स देश में ई मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी काम हो रहा है। तो ब्रिक्स देश आपस में अपने अपने उनके जो उनका एक्सपीरियंस है उसको साझा कर सकते हैं, और फिर ये एक प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव पर लोगों को अब ध्यान देना है और उसको देखना है किस प्रकार से इसको आगे ले जाया जाए।
0: जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं।
1: हम लोगों ने कई दफा देखा है कि इस प्रकार का आंख में धूल झोंकने वाली हरकत पाकिस्तान करता रहा है। इससे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर के नाम पे अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है, उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनको खुद ही पता है कि लोग कहाँ हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए।
0: ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइया पर हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योगों के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइल से लेकर रडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार्स तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन्स तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: देश के 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज यमुना नदी का अविरल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पानी से जुड़ा ये 10वां विवाद है जो अब सुलझने वाला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस समझौते का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक समझौता है।
3: आज एक बहुत बड़ा समझौता 6 राज्यों के बीच में हुआ है, जिसका फायदा सिंचाई का भी होगा, पीने के पानी का भी होगा, पर्यावरण की दृष्टि से भी होगा। ये समझौता आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर जल बंटवारे को लेकर के लंबित इन प्रकरणों का समाधान हो रहा है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रयासों से ये समझौता संभव हो पाया है।
4: किसाऊ परियोजना हस्ताक्षर हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की पहल और सक्रिय प्रयासों से ही कई वर्षों से लंबित इस विषय पर राज्यों के बीच आज सहमति बनाने का रास्ता साफ हुआ है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए ₹2000 तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। ₹2000 से

0: ज्यादा के व्यक्ति से व्यवसायी लेन देन पर 0.4% का मामूली एमडीआर लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए एमडीआर की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। मंत्रालय ने बैंकों को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यवसायी या कारोबारी का ये शुल्क यूपीआई से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर न लगाएं। देश के माल निर्यात में इस वर्ष अगस्त में 26.12% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये 43 अरब 81 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में उछाल से माल निर्यात में ये वृद्धि दर्ज हुई है। सोने के आयात में गिरावट से व्यापार घाटा कम होकर 5 महीने के निचले स्तर 26.86 करोड़ डॉलर पर आ गया। जून 2022 के बाद इस वर्ष अगस्त माह में निर्यात वृद्धि सबसे अधिक 30.12% रही। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव E3 नीति और जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत पादप और मानव जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ प्रगति देख रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को ऐसी तकनीकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो कृषि संबंधी वास्तविक चुनौतियों का समाधान कर सकें और किसानों को लाभ पहुंचा सकें। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा है कि खेलों में प्रगति राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मिजोरम में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्रीमती खड़से ने ये बात कही।
1: We need to develop sports infrastructure.
2: हमें खेलों के बुनियादी ढांचे के साथ साथ युवाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे युवा ही विकसित भारत का भविष्य है। केंद्र सरकार लगातार राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं।
1: यूथ फॉर्मेशन बिल्डिंग।
0: अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज राजस्थान के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 16 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से ये स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे। नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने कहा कि इन विद्यालयों के विद्यार्थी IIT और नीट प्रवेश परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं।
3: इस साल जितने भी हमारे 500 से ऊपर स्कूल हमारे ऑपरेशनल हैं, उनमें से 450 से अधिक बच्चे IIT JEE एडवांस क्वालिफाई किए हैं और 350 से अधिक बच्चे नीट करे हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो बच्चे एडवांस क्लियर करे हैं और नीट क्लियर करे हैं, वो जरूर किसी न किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाए।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हौसी हमले की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेद्दा और तैफ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए हैं। यमन में नए सिरे से शुरू हुई इस लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। श्री ग्रीन ने क्वाड संगठन की बढ़ती सक्रियता पर बल दिया। श्री ग्रीन ने भारत के राजनयिक नेतृत्व, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भूमिका की प्रशंसा की। भारत ने HIV एड्स के उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सहायता के लिए आज बोत्सवाना को 10 टन एंटी रेट्रोवायरल दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि इससे भारत के ग्लोबल साउथ साझेदारों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की देश की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो संचालित करने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना गलत ट्रेड प्रैक्टिस, गलत अनुबंध और डार्क पैटर्न के लिए

0: लगाया गया है। इसमें राइड कंफर्म होने से पहले राइडर्स से ज्यादा पैसे लेने के लिए कहा जाता था। केरलम के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा है कि राज्य में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार उच्च दरों पर बिजली खरीदने पर विचार कर रही है। उन्होंने बिजली कटौती की समस्या के तुरंत समाधान का भरोसा दिलाया। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता वी मुरलीधरन ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 74,004 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 23,119 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 41 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए पर बंद हुआ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुआखाई के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये पर्व किसान, फसल और भाईचारे का उत्सव है और ये सद्भाव की भावना को मजबूत करता है। ओडिशा के प्रमुख पर्व नुआखाई का अर्थ है नया खाना। इसे धान की नई फसल आने पर मनाया जाता है। दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 148 रन बना लिए हैं। पहले मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला बृहस्पतिवार को दिल्ली में ही खेला जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल के हिमालय क्षेत्र, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत में भी कल तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा चीन के साथ मुख्य चिंताओं को दूर करने में आपसी सम्मान, हित और संवेदनशीलता को मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। भारत ने कहा खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। लाल सागर में बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया लोगों से व्यापारियों को 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेन देन पर लगने वाला 0.4% शुल्क व्यापारियों पर लगेगा। लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हौसी हमले के अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की और दिल्ली में भारत तथा अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. New Delhi says core concerns of India-China relations should be guided by mutual respect, interest and sensitivity. India says targeting of commercial ships and seafarers in Gulf region is unacceptable, expresses concern on escalating situation in Red Sea. Finance Ministry clarifies charges of 0.4% to be levied on person-to-merchant UPI transactions above 2,000 rupee will be paid by merchants. No charges on person-to-person transactions. Saudi Arabia activates warning in Mecca amid Houthi attack speculations. And in men's cricket, second T20 international between hosts Afghanistan and India underway in Delhi. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs has said several issues were discussed during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the 18th BRICS summit held in New Delhi recently. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Prime Minister referred to India's concerns and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns.
3: Several issues came up during the discussions. Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined those that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the three mutuals, mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity.
2: The spokesperson said external

0: Manthunt.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जगवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता प्राची प्रिया।
2: नमस्कार, कार्यक्रम मंथन में आप सबका अभिनंदन। श्रोताओं, आज का विषय है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। इस पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक और सलाहकार डॉक्टर जगवीर सिंह। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपको।
2: करते हुए कि स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर अभियान जो है ये क्या है, मैं चाहूंगी कि आप इस पर प्रकाश डालें।
3: जो अभी हम देख रहे हैं कि कुछ जो इकोलॉजिकल चुनौतियां देखें तो उसमें सागर से संबंधित, ओशन संबंधित काफी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं हम लोग। और यदि हम जलवायु परिवर्तन का भी देखें तो उसका भी प्रभाव एक पड़ रहा है, वो तो है ही है। साथ में हम लोगों की कुछ जो मानव जनित जो गतिविधियां हैं, विशेष करके प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक का, उससे इकोलॉजिकल एक डिसबैलेंस पैदा हो रहा है। तो इसके लिए अब आवश्यकता है कि हम लोग समुद्र की ओर, जिनको हम समुद्र देवता भी बोलते रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दें, जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस में हम सहभागी हो सकें और अपने खुद के हित के लिए बहुत आवश्यक है।
2: महोदय, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान ने 2022 में 75 दिनों और 75 लोकेशन से 17 सितंबर में इसकी शुरुआत की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आज इसके विस्तार को अगर हम देखें और जन भागीदारी को अगर हम देखें तो आपके लिहाज से आप इसे कैसा आंकते हैं?
3: बिल्कुल, आपने सही कहा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने बाकी मंत्रालयों के साथ में मिलकर के 2022 में इसकी शुरुआत की थी, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। और आपको जानकर हर्ष होगा कि उस समय, जैसा कि 75 वर्ष आजादी के हम लोग मना रहे थे, तो माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका जो एक रहा मार्गदर्शन, जो एक सोच रही कि एक ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम लोग इसको एक दिन की बजाय उसको 75 डेज का हम लोग करें एक्टिविटी। और उसके चलते हुए हम लोगों ने 75 डे लॉन्ग एक एक्टिविटी की थी, जो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर की शुरुआत हुई। और जो 17 सितंबर को उस समय इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे था, जो कि बताना चाहूंगा आपको कि हर वर्ष तीसरे शनिवार को पड़ता है सितंबर में, ये तो 2022 में जो तीसरा शनिवार था वो 17 सितंबर का था। तो उसी के अनुसार हम लोगों ने 75 डेज लॉन्ग एक्टिविटी की थी, जिसमें हमारे साथ में बाकी मंत्रालय भी शामिल थे, विशेष करके इंडियन कोस्ट गार्ड और साथ में NSS, यूथ अफेयर, ये सभी लोग हमारे साथ में थे और शिपिंग एंड पोर्ट भी हमारे साथ शामिल था।

0: तो वो एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी साबित हुई। और हम बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जब ये शुरुआत की थी तो उस समय था कि हम लोग जैसे कि 75 डेज 75 ईयर ऑफ आजादी और साथ में 75 लोकेशंस एट द कोस्ट, ये हम लोग एक कपल के साथ चले थे। और हम लोगों ने अनुरोध किया था बाकी सभी जो हमारे संगठन हैं, जितने भी हैं, जो स्वयंसेवी संगठन हैं, छात्र वर्ग है और यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस को भी हमने इरेस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजन, मैं बात कर रहा हूँ सभी के साथ हम लोगों ने एक अपील की थी और परिणाम जो हुए बहुत ही उत्साहजनक थे वो।
1: आपने जिन 75 लोकेशंस की बात की है, अलग अलग लोकेशंस मैं ये मान करके चलती हूँ क्योंकि जगह अलग अलग है तो अलग अलग तरह की वहां पर अनुभूतियां रही होंगी, तो कैसा रहा हर जगह पर काम करना, किस तरीके से वहां पर काम किया गया?
0: मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो परिकल्पना की थी, हम लोग जिस काम को लेकर चले थे वो 75 जगह के लिए 75 कोस्टल लोकेशंस, और एक बहुत ही अच्छी भावना के साथ हम लोग चले थे और हम लोगों ने अपील की थी, अनुरोध किया था सभी से के सहयोग करें इस काम में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको और हमारे जो श्रोता हैं आकाशवाणी के, उनको बहुत खुशी होगी जानकर के, और जो हमारे साथ शामिल रहे हैं इस कार्य में, मैं उनको बहुत बधाई देते हुए मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारे साथ में युवा छात्र, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और संगठन, जो स्वयंसेवी संगठन, साथ में स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस, सभी लोग जब जुड़े मंत्रालयों के अलावा, तो 836 स्थानों पर ये एक्टिविटी हुई, जो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर बजाय 75 प्लेसेस के 836 लोकेशंस में हुआ। और उसमें भी आपको जानकर के बहुत खुशी होगी कि हम लोगों की जो कल्पना थी कि हर एक लोकेशन पर 75 हमारे खुद के एम्प्लॉय सरकारी लोग और साथ में बाकी छात्र लोग शामिल होंगे।
1: युवा भागीदारी आप इतनी महत्वपूर्ण क्यों देखते हैं इस परिपेक्ष में, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी।
0: इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2022 से ही हम एक बात देख रहे हैं कि वैसे भी बहुत योगदान रहा ही है हमेशा कि NSS विशेष करके और साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के बाकी जो ब्रांचेज हैं उसमें वो लोग बढ़ चढ़ के हमारे साथ में आए थे। और अभी तो हमारे साथ में स्काउट्स गाइड भी इसमें जुड़ गए हैं और NCC भी साथ में था, तो उसके चलते हुए एक और साथ में जो और यूनिवर्सिटी कॉलेज जुड़े और जाकर स्वयंसेवी संगठन जुड़े, उसके चलते हुए ये संभव हो पाया कि इतनी सारी जगह पर 836 लोकेशंस में, और वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा 1,25,000 से ज्यादा लोग भाग उसमें सहभागी हुए। और यदि आप देखें कि बाकी जो था, जैसे कि उसी समय था कि गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर काफी जोर दिया था कि उसको हमको इरेडिकेट करना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़ी मात्रा में वहां से सिंगल यूज प्लास्टिक हटाया गया 2022 में।
1: जी, हम ये सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बहुत ही एक तरीके से, अगर मैं कहूँ कि ये खतरा है हमारे पूरे मैनकाइंड के लिए, तो ऐसे में समुद्र में जो पहुंचने वाला प्लास्टिक है, हम पढ़ते हैं, जानते हैं, देखते हैं कि वो धीरे धीरे माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाता है, जैसा कि आपने शुरुआत में भी बताया। और इसी पर मैं आगे आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो फूड चेन में अल्टीमेटली ह्यूमन तक आता है, क्योंकि वो जो माइक्रो प्लास्टिक पानी में जो जीव जंतु हैं उन्होंने उसे कंज्यूम किया और फिर वही सी फूड जो है हम तक आ रहा है, तो इस चीज को अगर हम ध्यान में रखते हुए देखें, उस लिहाज से ये अभियान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण बन जाता है।
0: ये एक आपने बिल्कुल सही कहा है कि माइक्रोप्लास्टिक्स जो भी अभी अध्ययन हुए हैं कुछ, उसमें वो ह्यूमन बॉडी में पहुंचा हुआ पाया गया है।
1: जी,
0: तो वो वाकई एक बुरी खबर है,
1: बहुत ही बड़ा खतरा
0: है और बुरी खबर है। और आपको याद होगा अच्छी तरह से, सभी हम लोग जानते हैं कि वर्ष 2022 में भारत पार्लियामेंट ने पास किया जिसमें कि सिंगल यूज प्लास्टिक इज बैंड, तो वो एक सरकारी तरीके से जो एक नियम बना, वो एक बड़ा नियम है। नियम केवल काम नहीं करेगा, अकेला नियम, हम लोगों का जो बिहेवियरल चेंज है उसकी बहुत आवश्यकता है। तो उसके चलते हुए जैसे ये स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर एक अभियान जब चलाया गया 2022 में, जैसे मैं बताया कि एक विशेष परिकल्पना के साथ में चलाया गया, उद्देश्य के साथ चला गया, ये उसके तुरंत बाद ही था। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि बिहेवियरल चेंज भी हो लोगों में, बजाय सिंगल यूज प्लास्टिक के हम लोग कपड़े के थैले का उपयोग करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि इसके तुरंत ही हमारा जो मंत्रालय है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, हम लोग हर वर्ष पृथ्वी दिवस का आयोजन करते हैं और सपोर्ट करते हैं। इस वर्ष भी लगभग जगह जगह पर ये किया गया 200 विद्यालयों में, और वहां पर हम लोगों ने इसको बढ़ावा दिया कि हम लोग पर्यावरण प्रकृति संरक्षण का ध्यान दें और हम लोग थैले का उपयोग करें, कपड़े के थैले का, बजाय प्लास्टिक जैसी चीजों के। तो ये एक बिहेवियरल चेंज की अवस्था। दूसरा जो सरकार ने कहा है, जो सरकार का जोर है कि रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, तो एक परिवर्तन जो सुखद देखा जा रहा है कि ना केवल सरकारी संस्थाएं बल्कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस पर काफी ध्यान देना शुरू किया उन्होंने, और लोगों में भी विशेषकर विद्यार्थियों में चेंज आया है कि वो प्लास्टिक के बजाय वो लोग बाकी, चाहे वो कपड़े के बैग हो या फिर जूट के थैले, उसका उपयोग काफी मात्रा में बढ़ाया धीरे धीरे।
1: क्योंकि आपने व्यवहारिक स्तर पर बदलाव की बात की है जो कि समाज में बहुत ही निजी तौर पर

0: हो सकता है कि हमारा व्यवहार किस तरीके से पर्यावरण के प्रति रहे। ऐसे में और इस बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि कितना महत्वपूर्ण है पर्यावरण संरक्षण एक मोटा माटी स्तर पर, क्योंकि यहाँ पर तो हम समुद्र की सफाई की बात करते हैं, समुद्र की सुरक्षा की बात करते हैं। भारत अपने आप में, भारत का जो तटीय खिंचाव है वो 11,098 किलोमीटर है, हम सब जानते हैं। तो उसे साफ करना, गंदा करना, फिर साफ करना, मतलब लगता है ये कितना लॉन्ग टास्क हो जाता है। तो पहले ही हम अपने आप को इस तरीके से बना करके रखें कि हम नहीं गंदगी फैलाएं। तो आपने जिस बिहेवियरल चेंज की बात की या निजी स्तर पर एक अप्रोच की बात की जो बदले, इसके लिए क्या कोई कैंपेन या किसी तरीके की जागरूकता इस संदर्भ में फैलाने की कोशिश की गई हो इस 4 साल के अंतराल में?
1: हाँ, ये अभी एक परिवर्तन बहुत बड़ा देखने में आ रहा है। आपने देखा होगा, स्वयं भी आपने नोटिस किया होगा कि जब से ये स्वच्छता ही सेवा, तो जब से ये कैंपेन विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे जब किया ये, तो उसके बाद में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है समाज में कि लोग बाग सफाई के प्रति, वैसे तो हम लोग पहले भी जागरूक थे और भी ज्यादा जागरूक हुए हैं, सजग हो गए हैं, और विशेषकर कुछ चीजों के लिए जैसे कि प्लास्टिक का उपयोग करना, कुछ इधर उधर फेंकना, उस पे बहुत कमी आई है। अब बहुत सुधार है वो, और ये बात बहुत सुखद है कि हमारे यहाँ पर एक विशेष करके जो हम लोगों की पर पार्टी रही है, जो एक हम लोगों प्राचीन काल की जो पद्धति रही है कि हम लोग हमेशा जो प्रकृति के लिए, संरक्षण के लिए उसको पूजनीय मानते रहे हैं, और चाहे वो जल हो, तो हमने जल को पानी नहीं, हमने जल देवता ही कहा, वायु देवता, अग्नि देवता, समुद्र देवता। तो हम लोगों का एक जो सम्मान रहा है प्रकृति के प्रति, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बैठा हुआ है। और साथ में जो हमारे जो संविधान में जो, अगर आप देखेंगे विशेष करके जो अनुबंध हैं कुछ, वो भी प्रकृति के संरक्षण और उचित उपयोग पर जोर देते हैं।
0: एक सप्ताह भर इस अभियान को मनाया जाएगा जो कि आज से शुरुआत है। कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं इस अभियान के अंतर्गत होंगी जो उत्साह वर्धन का काम करेंगी युवाओं में और जो वहां के रिहायशी जो लोग हैं उनके लिए?
1: इसमें देखिए, पूरा एक हफ्ते का ये प्रोग्राम रखा गया। इसको माननीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 1 सितंबर को लॉन्च किया था डिजिटली। उसके बाद में 12 से 19 सितंबर तक का ये एक हफ्ते का प्रोग्राम है, क्योंकि 19 सितंबर को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे भी है इस समय। एज आई टोल्ड यू, एक हफ्ते की जो गतिविधियां वो इस तरह की रही हैं हम लोगों की कि जिसमें कि सब लोग ठीक से जुड़ सकें। जैसे कि 12 तारीख को शुरुआत हुई, तो इनॉग्रल डे था वो, जहां पर ईस्ट कोस्ट में अगर हम देखें, वेस्ट बंगाल के दीघा में, वहां पर एक्टिविटी हमारे यहाँ के संयुक्त सचिव वहां पर थे और डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट थे वहां पर, बाकी साइंटिस्ट और वहां के स्टूडेंट्स, दीघा बीच में 12 तारीख को। उसी समय अगर हम देखें वेस्ट कोस्ट पर, तो गुजरात यूनिवर्सिटी में लगभग 1000 स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स थे, जो कि एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने आयोजित की थी, कॉन्फ्रेंस ऑन कोस्टल इकोलॉजिकल सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो उसमें इतना ये इम्पोर्टेंट विषय है कि वहां पर माननीय राज्य गृह मंत्री भी आए थे, माननीय नित्यानंद राय जी, उसमें माननीय जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी, उन्होंने ऑनलाइन कनेक्ट किया था, और साथ में जो वैलिडिक्ट्री सेशन था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सचिव डॉक्टर टी श्रीनिवास कुमार उसमें थे। उसी समय आपको बताना चाहूँगा कि हर एक कोस्टल स्टेट से उसमें सहभागिता थी, उसमें सभी लोग वहां मौजूद थे, और वहां पर एक प्लेज भी ली गई, एक शपथ ली गई, जो कि समुद्र के प्रति जागरूकता और रखरखाव और ध्यान के लिए थी। 12 के बाद में 13 तारीख को संडे ऑन साइकिल, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, उन्होंने संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम स्वच्छता ही स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर के लिए उन्होंने लगभग 3000 से अधिक स्थानों पर किया। और इसके बाद में आपको बताना चाहूंगा कि 14 तारीख को भी मैराथन हुआ, 15 को भी एक्टिविटीज हैं, और अगर देखें 16 तारीख को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो हमारे जो विभाग हैं, जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग और बाकी विभाग, वो लोग पूरे देश में जगह जगह पर ओजोन दिवस मना रहे हैं। और इसके बाद में अगर हम देखेंगे 17 तारीख को एक प्लेज का, सभी जगह प्लेज और ह्यूमन चेन, जो कि समुद्र के प्रति अपनी जागरूकता और समुद्र का रखरखाव के लिए है।
0: जी, इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई समुद्र को लेकर के, उसके संरक्षण को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के। एक बहुत ही बड़ा अभिन्न अंग है ब्लू इकोनॉमी, जो बहुत सारे जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। एक साफ समुद्र मछुआरों, कोस्टल बिजनेस और लाखों तटीय परिवारों की जो रोजी रोटी है उसको बहुत ही महीन स्तर पर प्रभावित करता है। ऐसे में अगर हम इस अभियान की परिकल्पना को देखें और पिछले 4 साल में किए गए जो हमारे कर्म हैं इसके प्रति, और जो हमारा डेडिकेशन, जो समर्पण रहा है, इस लिहाज से इसकी महत्ता कितनी बढ़ जाती है?
1: इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका बार बार उल्लेख किया है।

0: इकोनॉमी की जो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि
1: जी
0: जो समुद्र है वो हम लोगों को काफी उनकी जानकारी है नहीं, और जितना हमको मिल रहा है उतना ही हमको जानकारी नहीं है। आपको बताना चाहूंगा कि मोर देन 50% ऑक्सीजन हम लोगों को समुद्र से मिलती है, और सरकार का जो एक विजन है, जो सोच है, जिस तरह की अब लोग हम मिशन मोड में काम कर रहे हैं, तो एक परिकल्पना है 2035 तक हम लोग 7-8% जीडीपी का हिस्सा ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से होगा। और यहाँ तक आप देखें कि वर्तमान में जो भी हम लोगों के प्रयास चल रहे हैं सरकार के, भारत सरकार के, लगभग 40 करोड़ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कारोबार से जुड़े हुए हैं वो संबंधित, और प्रोपोर्शनेटली उम्मीद के आस्ते आप अंदाज लगा सकती हैं कि 2035 में निश्चित तौर पर एक उसमें बहुत अच्छा इजाफा होगा।
1: बहुत धन्यवाद डॉक्टर जगवीर सिंह जी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और हमसे इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए।
0: धन्यवाद प्राची जी, आपका भी और आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जगवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता प्राची प्रिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप का नंबर है हमारा 9289094044।
3: मंथन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज ये जानकारी दी।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस तरह के दिखावे नए नहीं हैं। ओमान के तट पर वाणिज्यिक जहाज MTEL गाइला हमले पर श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों, चालक दल के सदस्यों, लोगों और असैन्य बुनियादी ढांचे पर हमले भारत के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि भारत उस क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित नौवहन का आग्रह करता है। हूती हमलों की अटकलों के बीच सऊदी अरब ने मक्का में चेतावनी जारी की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सऊदी अरब और प्रमुख क्षेत्रीय समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नई चेतावनी, हमले और सैन्य झड़पों की खबरें लगातार मिल रही हैं। सऊदी अरब में आज मक्का, जेदा और तर्फ में बहुत कम समय के लिए आपातकालीन चेतावनी जारी की गई। उधर यमन के हूती विद्रोहियों ने आज दावा किया कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों के तैज प्रांत पर हमले में 3 लोग मारे गए। यमन में नए सिरे से शुरू हुई लड़ाई से नागरिकों की जान खतरे में है और लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाज़ों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों के बीच UPI से कितनी भी राशि के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपये तक का लेन देन निःशुल्क रहेगा। इस प्रकार व्यक्तियों से व्यापारियों को लगभग 96% लेन देन अप्रभावित रहेगा। 2000 रुपये से अधिक के व्यक्ति से व्यवसाय लेन देन पर 0.4% का मामूली MDR लगेगा, जबकि 75,000 रुपये और उससे अधिक के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए MDR की सीमा 300 रुपये प्रति लेन देन होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रक्षा बलों, अनुसंधान और विकास संस्थानों तथा उद्योग के बीच निर्बाध सहयोग के जरिए ही हासिल की जा सकती है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मिसाइलों से लेकर राडार तक, लड़ाकू विमानों से लेकर पनडुब्बियों तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।
2: आज 2026 में DRDO ने मिसाइल से लेकर राडार तक, कम्बैट एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटीज साबित की है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए DRDO आज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इस सच्चाई को ही कोई नकार नहीं सकता।
0: भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण